0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 17 मई 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी में लाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं।
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

A very good morning आप सभी को, सुप्रभात। संडे की सुबह, वीकेंड का आखिरी दिन और समय है थोड़ा सा रुकने का, थोड़ा समय है सुस्त करने का। 5:07 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर रिलैक्स शो, जहां सुबह शुरू होती है सुकून के साथ और यादें सजती है सदाबहार गानों के रंग में। आज की खूबसूरत शुरुआत हुई एक टाइमलेस मेलोडी सी। जी हाँ, ये जो गाना हमने अभी अभी चलाया, तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में। संडे मॉर्निंग का अपना ही जादू होता है, ना जल्दी ना भाग दौड़, बस चाय की खुशबू, हल्की सी ठंडी हवा और दिल को छू जाने वाले गाने। तो चलिए सुकून भरी सुबह को और भी हम खूबसूरत बनाते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया, एंड वी आर हियर टू प्ले सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आप लोगों का साथ मिले तो इस संडे को संडे जैसा ही बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंफर्टेबल इसे हम बनाएंगे। बस आप साथ निभाते चलिए एंड एंजॉय द म्यूजिक। द नेक्स्ट ट्रैक यहाँ पर हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे साथ कनेक्टेड है और बहुत सारा प्यार यहाँ पर भेज रहे हैं और भेजने वाले हैं 5499-1294।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: Chillax with Radio Musty.
1: और ये जो पुराने गाने होते हैं एक डायरी की तरह होते हैं, हर मेलोडी एक याद, हर अंतराय का कहानी। कभी किसी संडे को रेडियो पर सुना हुआ गाना आज भी वही फीलिंग ला देता है जैसे समय रुक गया हो। और शायद इसीलिए सदाबहार हैड म्यूजिक कभी ओल्ड नहीं होते। माना कि इनको हम ओल्डीज कहते हैं लेकिन कभी भी ओल्ड नहीं होते, क्योंकि इमोशंस कभी पुराने नहीं होते। चलिए अभी हम आपके मैसेजेस की ओर भी हम बढ़ेंगे एंड देखेंगे कि आपने यहाँ पर भेजा क्या है। सो लेट्स गेट टू नॉर्मल मैसेजेस फर्स्ट। हमारे साथ है डारेन स्वीटर, रवीश, प्रीशा, लुवीश, हमारे परिवार है रोशनवा से एंड गुड मॉर्निंग आपको। आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम ऑन ट्रिलैक्स यहाँ पर गाने के साथ। एक और मैसेज, गुड मॉर्निंग रिया एंड ऑल रेडियो लवर्स, गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड कह रहे हैं कि हमने साथ देने का वादा बहुत पहले कर दिया है, आप यूं ही मस्त रखे सुनाते रहो। नाइस सिलेक्शन फ्रॉम चांद, थैंक यू चांद, एंड बहुत बहुत बहुत सारा प्यार आपके नाम जाता है। द नेक्स्ट ट्रैक इज आउट टू यू एज वेल। हमारे साथ ऑल्सो जुड़ी हुई है रीना, आप है से और डेडिकेट करना चाहती है नेक्स्ट गाना अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु फाउडा के नाम, जो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। सो हैप्पी बर्थडे आपको अनु, बहुत सारा प्यार है, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ आपको। एंड यहाँ पर आपकी बेस्ट फ्रेंड रीना आपको विश कर रही है हैप्पी हैप्पी बर्थडे। सो संडे के दिन बर्थडे पड़ गया है तो डबल सेलिब्रेशन का मामला पड़ गया है। सो हैव अ गुड गुड टाइम अपनों के साथ। एंड यहाँ पर गुड मॉर्निंग रिया, विश यू खूबसूरत संडे ऑन रेडियो मस्ती, थैंक यू, आपको भी हम ब्यूटीफुल संडे विश करते हैं। एंड हमारे साथ जुड़ी हुई है सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी, उमेश, कैथोबोन से है और शमी कपूर जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो अगर हो पाए हम ज़रूर उनका एक गाना चलाएंगे आपके नाम। मामू से धनेश्वर जी और आपकी प्यारी पत्नी है सुनीता, साथ में संजीव, निशा और दावे दोस्त परिवार, इन सभी के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल वन जो हम चलाने वाले हैं, आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगा।

0: Chillax with Radio Masti,
1: your number one Bollywood radio station.
2: या चुप रहूं
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या

0: Tracks with Radio Musty.
1: इट्स संडे टुडे और संडे हमें एक छोटी सी रिमाइंडर हमेशा देता है कि लाइफ सिर्फ रेसन नहीं है, कभी कभी पॉज भी ज़रूरी है। जी हाँ, एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। एक कप चाय, बालकनी का व्यू और बैकग्राउंड में सॉफ्ट मेलोडी, जैसे कि हम चला रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट नहीं, लेकिन हर प्रकार की गाने चला रहे हैं यहाँ पर, जो आपको निसंदेह बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस समय अगर आप घर पर हो, किचन में हो या काम के लिए निकल चुके हो, हाँ संडेज के दिन भी काम करते हैं लोग, बहुत सारे लोग, तो अगर आप काम के लिए निकल चुके हो, बस आपसे कहेंगे कि म्यूज़िक एंजॉय करते जाइए और इस संडे को आप फुल ऑन जाइए। ये गाने आपके ही नाम हम चलाते रहेंगे। एंड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स जो कनेक्टेड है हमारे साथ, और कब से कनेक्टेड है आपका, हम दिल से थैंक यू कहते हैं और बहुत सारा प्यार आप सभी के नाम जाता है। चलिए लेट्स से हियर द नेक्स्ट ट्रैक, और चलिए एक दो मैसेजेस भी हम देख लेते हैं। हमारे साथ है जयशन जी जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग आपको जयशन जी, आई होप कि आपका संडे बहुत ही अच्छा जाए। और यहाँ पर अब्दुल और सारा बानू जी हमारे साथ कनेक्टेड है। हैप्पी संडे विश करते हैं सभी को, हैप्पी संडे आपको भी। ज्योति जी आप है शादी बनारस से, और नेक्स्ट गाना आशनी रेखा सुरेखा और माधव परिवार और हमारे लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डेडिकेशन, और हम आपके पूरे परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक ज़रूर डेडिकेट करेंगे।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: 5:43 और अभी हम आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। सुबह से ही मन में उत्साह महसूस होगा। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से सुकून आपको मिलेगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज शांति और सुकून का दिन है। घर का माहौल हल्का और खुशनुमा रहेगा। दिल की बात कहने का सही समय मिल सकता है आपको और आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज मुलाकातें और बातचीत खुशी लेकर आएंगी। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। नए विचार आपको प्रेरित करेंगे। छोटी सी यात्रा या सैर का योग बन सकता है। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। परिवार के साथ समय बिताने का मन करेगा। किसी अपने का साथ हौसला बढ़ाएगा। पुरानी यादें मन को छू सकती है। अपने दिल की बात दबा कर ना रखें। शाम शांत और सुकून भरी रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आज अपनी पसंद का काम करने का मौका भी मिलेगा। घर से बाहर थोड़ा समय बिताना मन को ताजगी देगा। किसी नए विचार पर काम शुरू कर सकते हैं आप। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज व्यवस्था और योजना बनाना आसान लगेगा। घर के छोटे काम पूरे करने का अच्छा समय है। मन शांत रहेगा और सोच स्पष्ट होगी। किसी बड़े फैसले में जल्दी ना करें। अपने लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी है। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: लीब्रा तुला राशि।
1: आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। किसी अपने के साथ दिल से बात होगी। मन कला और संगीत की तरफ आकर्षित रहेगा और तनाव धीरे धीरे कम होगा। आज खुद को खुश रखने की कोशिश करें। दिन संतुलन और सुकून से भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज अंतर की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। किसी उलझन का हल मिल सकता है। अकेले में थोड़ा समय बिताना अच्छा आपको लगेगा। गुस्से से दूर रहना आज जरूरी है और ध्यान या प्रार्थना मन को शांति देगी। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज उत्साह और उमंग बना रहेगा। नए इरादे और नए सपने मन में जग सकते हैं। दोस्तों या परिवार के साथ हंसी मजाक का माहौल रहेगा और छोटी सी आउटिंग का योग बन सकता है। आज अपनी मुस्कान दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज जिम्मेदारी और आराम दोनों का संतुलन बनाना होगा। काम से थोड़ा विराम लेना भी जरूरी है और आर्थिक सोच विचार लाभदायक साबित होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मन में स्थिरता महसूस होगी। शाम शांत और सुखद रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज नए विचार और प्रेरणा का दिन है। किसी रोचक बातचीत से मन खुश होगा। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। आज किसी की मदद करने का अवसर आपको मिल सकता है और दिल से की गई बात रिश्तों को और गहरा करेगी। दिन हल्का और प्रसन्न रहेगा। लेकिन नंबर है आज आपका 4।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज भावनाएं और संवेदना दोनों गहरी रहेंगी। प्रार्थना या ध्यान से मन को शांति मिलेगी। कल्पना शक्ति मजबूत रहेगी और किसी अपने की बात आपको प्रेरित करेगी। आज दिल की सुनना फायदेमंद रहेगा। शाम तक मन में संतोष रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 12। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
0: Your daily horoscope.
3: RM2 Radio Masti.
4: RM2 Radio Masti.
5: Yun hi tum mujhse ba

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: क्या कहा?

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: A very good morning आप सभी को सुप्रभात घड़ी मिलाते चलिए सुबह की ठीक 6 बज रहे हैं समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का तो आइए इसे हम अभी के साथ हैं संत नमस्कार आपको अभी
7: नमस्कार रिया श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब सुबह के पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ आईसीटी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस जिसे आमतौर पर सेट एमयू के नाम से भी जाना जाता है उसने ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी के मामलों में अचानक आई तेजी को लेकर अपनी चेतावनी जारी की है कुछ दिन पहले वकील आशिक तुआबाली साइबर क्राइम के जाल में फंस गए थे इस मामले की शिकायत सीसीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट में दर्ज कराई गई मॉकस प्लस प्लेटफॉर्म के 2026 के आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन स्कैम और धोखाधड़ी के 242 मामले पहचान की चोरी के 217 मामले और फिशिंग के 15 मामले दर्ज किए गए नैडेक यानी कि नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं में की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी ये स्पष्टीकरण शुक्रवार सुबह इसके सीईओ कुणाल नायक ने हमारी टीम के साथ मॉर्निंग इंटरव्यू में दिया उनके अनुसार नैडेक की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना डेटा का विश्लेषण करना विभिन्न संबंधित निकायों के साथ मिलकर काम करना और सिफारिशें तय करना आदि शामिल हैं मॉरिशस में अनुसंधान और नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल को पारित कर दिया गया है जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान को केंद्रित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्री कविराज सुकों के अनुसार इस सुधार का उद्देश्य मॉरिशस को एक अधिक रणनीतिक निकाय प्रदान करना है विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि बैंकॉक में शनिवार को एक ट्रेन की टक्कर हुई जिसके बाद आग की चपेट में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए पुलिस ने बताया कि जैसे ही आग ने बस और आसपास के वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया दमकल कर्मियों और बचाव दलों को मौके पर भेजा गया उन्होंने ये भी बताया कि इस टक्कर में एक ट्रेन बस और कारें तथा मोटरसाइकिलें शामिल थीं तो ये थी अब तक की खबरें और अंत में मौसम का हाल आम हालत दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी जबकि दिन के दौरान पूर्वी ढलानों पर साथ ही साथ सेंट्रल प्लाटू और दक्षिण में वर्षा होने की आशंका है ऊंचे इलाके पर कोहरा छाया रहेगा रात के दौरान ऊंचाई पर थोड़े से बादल घिराएंगे और रह रहकर बरसात होगी हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठाएंगी अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा

0: और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय लगभग 6:30 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 बजे आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को सुप्रभात। छः बजकर 10 मिनट हो रहे हैं और संडे की ये खूबसूरत सुबह अब और भी रंगीन हो रही है चिलैक्स के साथ सिर्फ रेडियो मस्ती पर। आज का सेकंड आवर शुरू हुआ एक दिल को छू लेने वाले गाने के साथ है, तेरे बिना फ्रॉम द मूवी गुरु एआर रहमान की सुर और वो एहसास जो सीधा दिल तक पहुँच ही जाता है। संडे मॉर्निंग्स कुछ अलग ही होती है, ना कोई जल्दी ना कोई टेंशन, बस हल्का सा मौसम, सुकून भरी हवा और बैकग्राउंड में ब्यूटीफुल मेलोडीज। अगर आप चाय के साथ बालकनी में हैं, ड्राइव पर है या अभी दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो इस संडे को थोड़ा और म्यूजिकल बना देते हैं। स्टे रिलैक्स, स्टे स्माइलिंग एंड स्टे चिलैक्स, क्योंकि यहाँ पर चिलैक्स शो में हम यही तो चाहते हैं कि आप चिल भी करें, रिलैक्स भी करें, और ये कैसे इन खूबसूरत ट्यून्स के साथ है। सो लेट्स गेट टू द ब्यूटीफुल ट्यून्स ऑन अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। दिस इज मी, आपकी रिया, आपके साथ, एंड आप सुन रहे हैं चिलैक्स ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती। आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप जरूर भेज सकते हैं ऑन 5499-1294।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: कभी कभी म्यूजिक वर्ड से ज्यादा बोल देते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस करने के लिए बने होते हैं। संडे का दिन भी बिल्कुल वैसे ही होता है, दिल को रिसेट करने का दिन, खुद से मिलने का दिन और उन लम्हों को जीने का दिन जो वीक के दौरान कहीं खो जाते हैं। आज के सेकंड आवर में हम लेकर आए हैं वही मेलोडीज और रोमांस भी होगा, नॉस्टैल्जिया भी और वही सुकून जो सिर्फ इन गानों में ही मिलता है। तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ाइए, मुस्कान को थोड़ा सा और गहरा बनाएं, क्योंकि ये नेक्स्ट ट्रैक हम आप सभी के नाम डेडिकेट करने वाले हैं। एंड इसी के साथ एक दो मैसेजेस हम देख लेते हैं। हमारे साथ पदभाग विदेशी जी है तयाक से, और एक रोमांटिक ट्रैक आप अपने लिए और अपने प्यारे अनुषा के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। ऑल्सो टू ऑल फ्रेंड्स के दिन विदेशी परिवार and for MBC crew as well. So thank you for this message. और हम जरूर चलाएंगे next track आपके नाम। हेमलता बजन जी हैं हमारे साथ, पटपीमा से जुड़ी हुई और early morning से रेडियो सुन रही है। And आपको गाने तो पसंद आ रहे हैं,

0: नेक्स्ट ट्रैक आप अपने पापा लीड पापा सूर्यदत्त बिपिन के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। वैसे आप अमिताभ बच्चन जी का एक गाना रिक्वेस्ट करी है लेकिन फर्स्ट आवर में हमने चला दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब भी आएंगे उनका गाना फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर हम ज़रूर चलाएंगे। एंड हमारे साथ ऑल्सो जुड़े हुए है यहाँ पर, आपने नाम नहीं लिखा बट कोई बात नहीं, आपका मैसेज हम पढ़ लेते हैं। हैप्पी संडे टू एवरी वन एंड आपको गाने भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पर पति पुष्कर और उनके सभी कलीग्स के नाम जो भी तुम काम करते हैं, एंड ऑल्सो फॉर मामा आरती, पापा जो, संजीव और भैया केशव, साथी किरोदा और गोती परिवार जो है, कुतेज रविया जुहाँ पास से दिशा की ओर से ये मैसेज आया है और हम ज़रूर डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट ट्रैक उनके नाम। जाना जी हैं फ्लैग से जुड़ी हुई, कैसी हैं आप जाना जी, आप के लिए और आपकी बेटी रीमा, शीष्टा, जेनिता, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सियोसरन परिवार के नाम हम ज़रूर नेक्स्ट गाना चलाएंगे। आज बर्थडे है ऑफ कियांश रामचंद, सो हैप्पी बर्थडे टू यू कियांश, मधुसालिया से है, बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मम्मा खुशबू, पापा आकाश, बहन है आरोही, नानी वीना, मामू केशल, मौसी एंड द होल रिकोई परिवार है रिश्ते ऐसे, सो आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.
0: इसी गाने के साथ आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन as well.

0: अपने घर मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 17 मई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईसीटी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस ने ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी के मामलों में अचानक आई तेजी को लेकर अपनी चेतावनी जारी की है। कुछ दिन पहले वकील आशिक तुगाबाली साइबर क्राइम के जाल में फंस गए थे। इस मामले की शिकायत सीसीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट में दर्ज कराई गई है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी। नैडेक की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना, डेटा का एनालिसिस करना, विभिन्न संबंधित निकायों के साथ मिलकर काम करना और सिफारिशें तैयार करना है। मॉरिशस में अनुसंधान और नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए यह एक नए युग की शुरुआत। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूशन बिल को पारित कर दिया गया है। उद्देश्य है मॉरिशस को एक अधिक रणनीतिक निकाय प्रदान करना। और विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, बैंकॉक में शनिवार को एक ट्रेन की टक्कर हुई जिसके बाद आग की चपेट में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। समाचारों को देती है विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि आईसीटी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस, जिसे आमतौर पर सेट एमयू के नाम से भी जाना जाता है, उसने ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में अचानक आई तेजी को लेकर अपनी चेतावनी जारी की है। कुछ दिन पहले वकील आशिक तुगाबाली साइबर क्राइम के जाल में फंस गए थे। इस मामले की शिकायत सीसीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट में दर्ज कराई गई है। मार्कोस प्लस प्लेटफॉर्म के 2026 के आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन स्कैम और धोखाधड़ी के 242 मामले, पहचान की चोरी के 217 मामले और फिशिंग यानी कि नकली या फिर फर्जी वेबसाइट के 15 मामले दर्ज किए गए हैं। सेट एमयू का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से धोखेबाज अब और भी ज्यादा हाईटेक और चालाकी भरे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बिल्कुल असली दिखने वाली फर्जी फिशिंग वेबसाइट्स बना रहे हैं जिसे भरोसेमंद लगने वाले धोखाधड़ी के ईमेल भेज रहे हैं और लोगों को फंसाने के लिए आवाज तक क्लोन कर रहे हैं। कुछ मामलों में लोगों को एक साइलेंट कॉल आती है। जब वे हेलो कहते हैं तो उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली जाती है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस आवाज की नकल करके पीड़ित के यानी कि लोगों के रिश्तेदारों या करीबियों से पैसे की मांग की जाती है। सेट एमयू के एक्टिंग ऑफिसर सचिंद्र रिचाय के बयान पर विवरण टीना बुदना का।
1: आजकल व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे धोखा और ऑनलाइन अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत लोग पैसे गवा देते हैं क्योंकि साइबर अपराधी उनके व्हाट्सएप अकाउंट को निशाना बनाते हैं, फिर वही अकाउंट का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों से संपर्क करते हैं और पैसे मांगते हैं। कभी कभी किसी विदेशी नंबर से कॉल आता है, जैसे +27 कंट्री कोड वाला जो अफ्रीका के कुछ देश

0: लोगों का होता है। उसके बाद संदेश भेजा जाता है कि कोई फोरम या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है और उन्हें उसमें बुलाया जाएगा। उसमें नाम दर्ज करने के लिए उनसे गुप्त संकेत यानी वन टाइम पासवर्ड मांगा जाता है। जैसे ही व्यक्ति ये जानकारी देता है, उसका अकाउंट तुरंत हैक हो जाता है और साइबर अपराधी उस पर कब्जा कर लेते हैं।
1: Que la personne est convaincue que ça, one time password là, c'est ça qu'ils ont besoin de soumettre. Et là, comment je donne cette information là? Cet account finit piraté.
2: इस स्थिति को देखते हुए CIMU जागरूकता अभियानों को तेजी से बढ़ा रहा है और जनता से अधिक सतर्क रहने की अपील कर रहा है। फिशिंग वेबसाइट्स एक फर्जी या फिर नकली वेबसाइट होती है जिसे हूबहू किसी जानी मानी और भरोसेमंद कंपनी की तरह दिखने के लिए बनाया जाता है। सचिंद्र रिचाय ने बताया कि CIMU इन घोटालों में इस्तेमाल होने वाली फिशिंग वेबसाइट्स और धोखाधड़ी वाले ईमेल को डीएक्टिवेट करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और विदेशी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिन मामलों में वित्तीय नुकसान होता है उन्हें जांच के लिए पुलिस के पास भेज दिया जाता है। अधिकारी याद दिलाते हैं कि साइबर अपराधी अपनी रणनीतियां नियमित रूप से बदलते रहते हैं, इसलिए जनता के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए रूपों के प्रति लगातार सावधान रहना अनिवार्य है। ज्यादा विस्तार एक्टिंग ऑफिसर सचिंद्र रिचाय के बयान पर विवरण तीना बुदना का।
1: Si vous payez un message ou un appel, que vous pouvez trouver une personne qui vous pas connaît un étranger, puis dire.
0: अगर आपको कोई मैसेज या कॉल आए जहां कोई विदेशी व्यक्ति आपसे कोई कोड, वन टाइम पासवर्ड या कोई भी गुप्त जानकारी मांगे, जैसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड, तो कभी भी ये जानकारी नहीं देनी चाहिए। और अगर आपको कोई कॉल या संदेश आपके किसी सगे संबंधी की तरफ से लगता हो, तो हमेशा दोबारा जांच करनी चाहिए और उस व्यक्ति को उसके हमेशा वाले नंबर पर फोन करके या कोई अन्य नंबर पर फोन कर लेना चाहिए कि वास्तव में वो वही व्यक्ति है या फिर नहीं।
1: हेलो उकानिक ऐसे टेलीफोन नहीं पॉन एन लुट मोये एन लुट लिमो टेलीफोन जस्ट टू एन शो की सीरी मैम।
2: पीतों के रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला को CCID की साइबर क्राइम यूनिट ने व्हाट्सएप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। जांच तब शुरू हुई जब एक पीड़ित का व्हाट्सएप अकाउंट तब हैक हो गया जब उसने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि OTP साझा कर दिया था। इसके बाद पीड़ित के कॉन्टैक्ट्स को पैसे ट्रांसफर करने की मांग करते हुए धोखाधड़ी वाली संदेश भेजी गई। जांचकर्ता संदिग्ध महिला की पहचान करने में सफल रहे। उसे 15 मई 2026 को रिवेजुरांपा अदालत में पेश किया गया, जहां उस पर इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले में मिली भगत का अस्थायी आरोप लगाया गया है और उसे वापस पुलिस की हिरासत में भेजा गया है। हमारे सहयोगी एड्रियन वालेया ने पुलिस प्रेस ऑफिस के ASP सुहेल लिदियालम से बात की। उनको सुनते हैं विवरण सुमेहरा अकबर अली।
3: Au niveau de la police, nous finons enregistrer plusieurs cas d'arnaque à travers la plateforme WhatsApp.
4: Police ne WhatsApp par chori ke kai mamle darj kiye. Jumirat 14 mai ko ek jaanch ke tahat cybercrime unit ne ek sandigdh vyakti ko giraftar kiya jo is network ka hissa ho sakta hai. Wo Black River zila adalat mein pesh hua aur use police ki hirasat mein bheja gaya. Police apni tehqeeqat jari rakh rahi hai. Jankariyon ke aadhar par aur logon ko giraftar kiya ja sakta hai. Nagrikon se is tarah ki chori se bachne ke liye सावधानी बरतने की मांग की जा रही है।
3: De l'investigation. Encore une fois, nous rappelle aux citoyens de faire preuve de vigilance face à ce genre d'arnaque.
2: जिस तरह से हम सुर्खियों में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि NADEC यानी कि नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी, ये स्पष्टीकरण शुक्रवार सुबह इसके CEO कुणाल नायक ने हमारी सहयोगी सांतना पोसनुक के साथ मॉर्निंग इंटरव्यू में दिया। उनके अनुसार NADEC की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना, डेटा का विश्लेषण करना, विभिन्न संबंधित निकायों के साथ मिलकर काम करना और सिफारिशें तैयार करना है।

विशेष रूप से नेशनल ड्रग मास्टर प्लान और गांजा सहित ड्रग्स से जुड़ी नीतियों पर चल रहे विचार विमर्श के ढांचे के भीतर। लेकिन कुणाल नायक ने इस बात पर ज्यादा बल दिया कि अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों, सरकार और संसद का होगा। पेश है इसका एक अंश टीना बुदना के साथ।

0: ये टेप बाद में चलाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि रुख लेते हैं पम्पलेमूसेज के कोजैक सेंटर का, जहां एक नई हाईटेक हॉट लंग मशीन अब ओपन हार्ट सर्जरी को और बेहतर बनाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये मशीन ऑपरेशन के दौरान खून की ज़रूरत को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगी। ये एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है, जिससे हर दिन 10 से ज़्यादा पॉइंट खून की बचत हो सकेगी और राष्ट्रीय ब्लड बैंक पर दबाव भी कम होगा। रजनी बिकर का विवरण।
1: शनिवार सुबह 9:30 बजे चिकित्सा टीम इस मरीज में ओपन हार्ट सर्जरी करने की तैयारी कर रही है। ये काफी जटिल ऑपरेशन है, जिसके लिए 4 से 5 पॉइंट खून की जरूरत। लेकिन शनिवार के दिन केवल एक ही पॉइंट खून, ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी से एक नया उपकरण लाया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और स्पष्ट रूप से हिसाब किया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान कितने खून की आवश्यकता होगी और इसकी बदौलत नुकसान को घटाया जा सकेगा। कार्डियक सर्विसेज के निदेशक डॉक्टर सुनील गणेश ने कहा,
2: une machine qui appelle une heart lung machine prend en relais les cœurs et ce poumon. Comme une machine, c'est l'intelligence artificielle qui calcule exactement sa température à l'écho. Là, température à l'écho baissée, flot disant dans l'écho aussi baissé. Et donc, sa machine-là, elle peut dire nous, tel flot qui allait, c'est-à-dire pas besoin autant disant que ça. Elle permet de ben chirurgien, ben anesthésiste, ben perfusionniste, travailler avec plus tranquillité.
1: उपकरण को चलाना काफी आसान है। Perfusionniste मरीज की जानकारियां डालते हैं, जैसे कि उसकी उम्र, वजन और साइज। बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ संचालित करता है।
2: पदयन एनएमबी मशीन नो पाच पे कोन पर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑक्सीजन dans 10 ans, concentration carbon dioxide dans 10 ans, pH 10 ans. Sa machine-là, en continu, il dit à nous PO2 combien, PCO2 combien, saturation combien, pH combien. Il est extraordinaire. C'est tout l'intelligence artificielle.
1: 15 jours ont été passés depuis 30 millions de rupees de la valeur des deux équipements obtenus. Les employés ont reçu de l'expérience de formation internationale. पम्पलेमूसेज के कार्डियक सेंटर में हर साल 900 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं। इस आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की बदौलत राष्ट्रीय ब्लड बैंक को भी काफ़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे के संदर्भ में शनिवार को केंद्र में एक रक्तदान का आयोजन किया गया। बहुत से दाता उपस्थित हुए।
0: और जैसे कि हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसला नहीं लेगी, ये स्पष्टीकरण शुक्रवार सुबह इसके सीईओ कुणाल नायक ने हमारी सहयोगी संतना पोसिनो के साथ मॉर्निंग इंटरव्यू में दिया। कुणाल नायक ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों, सरकार और संसद का होगा। पेश है इसका एक अंश तीना बुद्धना के साथ।
3: Premier, c'est le National Drug Control Commission, où le Premier ministre qui préside ce comité-là.
4: सबसे पहले राष्ट्रीय नशा नियंत्रण आयोग है, जिसमें प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। ये लोग बड़े स्तर पर नशा नियंत्रण योजना और एचआईवी के राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने का काम देखेंगे, क्योंकि एचआईवी भी हमारी जिम्मेदारी में आती है। इस हफ्ते की बैठक एक छोटी मंत्रिमंडल बैठक की तरह होगी, जहाँ राजनीतिक स्तर पर फैसले लिए जाएंगे और देखा जाएगा कि स्थिति क्या है और काम किस तरह से चल रहा है। उसके बाद नादक का प्रबंधक मंडल भी है, जिसमें 22 सदस्य है। इसमें अलग अलग संस्थाएं और कुछ एनजीओ की सदस्य भी शामिल है। वहां दूसरे स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और फिर सी

0: के रूप में भी मेरी भी एक आवश्यक भूमिका है। इसलिए हमें राजनीतिक निर्णय लेने वाले लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है ताकि जरूरी कदम उठाए जा सके, और सब कुछ विज्ञान और प्रमाण पर आधारित होता है ताकि हम हर बात की जांच कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आधार पर हम उन बातों का समर्थन कर सकते हैं जिन्हें हम लागू करना चाहते हैं।
1: Politique pour quand même mettre des affaires en place. Bien sûr, tout à fait basé sur la science, tout à fait basé sur une évidence capable de vérifier, parce qu'il est important pour nous capable de défendre ce que nous pouvons mettre en place.
2: मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कई अन्य संस्थानों के सहयोग से ओम्बड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के दफ्तर 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए एक लघु वीडियो प्रतियोगिता शुरू कर रहा है, योर लाइफ मैटर्स नुलावी प्ली एपोतों की लाद्रोग विषय के तहत प्रतिभागियों को ड्रग्स के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा। ये पहल बाई स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स की अवधारणा के तहत तैयार की गई है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता और भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों, विशेष संस्थानों और गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भाग ले सकते हैं। फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड के इंस्पेक्टर ने जोर दिया और इस बात पर ज्यादा बल दिया कि ये फिल्म प्रतियोगिता युवाओं को ड्रग्स से जुड़े खतरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस में अनुसंधान और नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए ये एक नए युग की शुरुआत है, नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूशन बिल को पारित कर दिया गया है जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को केंद्रित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्री कविराज सुको के अनुसार इस सुधार का उद्देश्य है मॉरिशस को एक अधिक रणनीतिक निकाय प्रदान करना जो राष्ट्रीय चुनौतियों के ठोस समाधान खोजने के लिए शोधकर्ताओं को एक साथ लाने में सक्षम हो। मंत्री कविराज सुको के बयान पर याचना मिश्रा का विवरण।
3: The first thing that NRI will be doing is looking at a
4: सबसे पहले तो हम एक डायबिटीज रिसर्च सेंटर की स्थापना करेंगे जिसका संचालन इंपीरियल कॉलेज से प्रोफेसर फ्रुगाल करेंगे। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रकाशन उनका ही हुआ है। हम इस समस्या के लिए संभव समाधान ढूंढना चाहते हैं। उनके पास जानकारियां हैं जिनसे सीक्वेंसिंग की जा सकेगी। हम चाहते हैं कि चीजें बदलें और सबको लाभ हो। धारा 23 में काउंसिल पर कहा गया है सबको साथ लाना। यदि कृषि क्षेत्र में कोई समस्या हो तो हम भी साथ देंगे। ये बिल ऐसे शोध ला रहा है जो अलग अलग तत्व अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ता है।
3: मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड दिस इज व्हाट दिस बिल इज ब्रिंगिंग।
2: ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य उद्योग मंत्रालय को इस पर पूरा भरोसा है। ये मछुआरों को लगूनों से आगे बढ़कर गहरे समंदर में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए मंत्रालय ठोस कदम उठा रहा है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसे पिछले शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसके नाव की आउटबोर्ड मोटर मरम्मत के लायक नहीं रह गई। इस मदद को लाभार्थियों ने बड़ी राहत के रूप में लिया और इसका सकारात्मक स्वागत किया। फरवरी से ही वाकुआ में जनकेनेडी एवेन्यू की रफ्तार धीमी पड़ गई है। टाकामाका नदी के पुल के काम के चलते दोनों रास्ते बंद हो जाने के बाद से व्यापारियों, निवासियों और कर्मचारियों का दैनिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वित्तीय नुकसान, लंबे डायवर्शन और हताशा के बीच कुछ लोगों के लिए अब उम्मीद बनाए रखने का भी मुश्किल हो रहा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और नाइजीरिया के सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार रात को आतंकी संगठन आईएसआईएस का उप प्रमुख अबू बिलाल अल मिनू की

मारा गया। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाइजीरिया के उनके समकक्ष बोला अहमद तिनुबू ने दी। बैंकॉक में शनिवार को एक ट्रेन की टक्कर हुई जिसके बाद आग की चपेट में 8 लोगों की हो गई है मौत और 25 लोग हो गए हैं घायल। पुलिस ने बताया कि जैसे ही आग ने बस और आसपास के वाहनों की चपेट में ले लिया, दमकल कर्मियों और बचाव दलों को मौके पर भेजा गया। उधर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेदरलैंड्स के राजा विलम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से शाही महल में मुलाकात की और डिजिटल प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, फिनटेक तथा ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। श्री नरेंद्र मोदी को यूएई में एक संक्षिप्त ठहराव के बाद नेदरलैंड पहुंचे। उनकी 5 देशों की यात्रा का दूसरा चरण है जिसमें स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी शामिल है। और अंत में मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी जबकि दिन के दौरान पूर्वी ढलानों, सेंट्रल प्लाटो और दक्षिण पर वर्षा होती रहेगी। ऊंचे इलाके पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान ऊंचाई पर थोड़े से बादल घेराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 6:30 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।

चलिए अंत में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आईसीटी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस ने ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में अचानक आई तेजी को लेकर अपनी चेतावनी जारी की। कुछ दिन पहले वकील आशिक तुगाबाली साइबर क्राइम के जाल में फंस गए थे। इस मामले की शिकायत सीसीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट में दर्ज कराई गई है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी। नादेक की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना, डेटा का एनालिसिस करना, विभिन्न विषय निकायों के साथ मिलकर काम करना और सिफारिशें तैयार करना है। मॉरिशस में अनुसंधान और इनोवेशन यानी कि नवाचार के लिए एक नए युग की शुरुआत, नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूशन बिल को पारित कर दिया गया है। उद्देश्य है मॉरिशस को एक अधिक रणनीतिक निकाय प्रदान करना। और विदेश में बैंकॉक में शनिवार को एक ट्रेन की टक्कर हुई जिसके बाद आग की चपेट में 8 लोगों की हो गई है मौत और 25 लोग हो गए हैं घायल। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। रॉयल रुई फोंजिसाक में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री शैलेश कुमार शिवहरक्का, श्री शैलेश कुमार शिवहरक्का जिन्हें सब लोग शैलेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड

फूजीसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 1:30। आर्य मंदिर रोड गुडलैंड्स में 53 साल के 53 years old के श्री राकेश मोहन, जिन्हें सब लोग पांडे के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके चाचा श्री कैलाश मोहन के घर

जानेट स्ट्रीट विल में कौची मिली थी हमें, नंबर 20 जानेट स्ट्रीट विल में कौची मिली थी हमें, 86 साल की 86 years old की श्रीमती सावित्री रामदत्त, श्रीमती सावित्री रामदत्त, पैदाइश नाम रामदत्त और जिन्हें सब लोग पिटकी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह के 9:30 बजे, आज सुबह 9:30 बजे उन्हीं के घर नंबर 20 जानेट स्ट्रीट विल में कौची मिली थी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस मॉर्निंग एट 9:30 AM। मेरांटी लेन डॉक्टर मेयर स्ट्रीट फ्लोरियल में, मेरांटी लेन डॉक्टर मेयर स्ट्रीट फ्लोरियल में 77 years old की कुमारी पसमंती लीलोधारी, कुमारी पसमंती लीलोधारी जिन्हें सब लोग ज्ञान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे, आज दिन के 10:30 बजे उन्हीं के घर मेरांटी लेन डॉक्टर मेयर स्ट्रीट फ्लोरियल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। चॉइटन रोड लेस्पेरेंस कौची मिली थी हमें, चॉइटन रोड लेस्पेरेंस कौची मिली थी हमें, 59 साल की 59 years old की श्रीमती जयवंती दुंदी, श्रीमती जयवंती दुंदी, पैदाइशी नाम लक्सिमो और जिन्हें सब लोग रामबाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, आज दिन के 11 बजे उनके भाई श्री जयराज अप्पा के घर चॉइटन रोड लेस्पेरेंस कौची मिली थी ऐसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान फ्लैक में, रॉयल रोड ब्रह्मस्थान फ्लैक में 78 साल की 78 years old की श्रीमती लक्ष्मीन मुनिसर चंद्रा, श्रीमती लक्ष्मीन मुनिसर चंद्रा, पैदाइशी नाम दुनमुन और जिन्हें सब लोग निवुल निवोद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:15 बजे, आज दिन के 11:15 बजे उनके बेटे श्री नितेश चंद्रा के घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:15 AM। मोसलमो ले पाल्मिये ट्रॉ बुटिक में, मोसलमो ले पाल्मिये ट्रॉ बुटिक में 60 साल की 60 years old की श्रीमती सरस्वती सुंदर, श्रीमती सरस्वती सुंदर, पैदाइशी नाम गुनावा और जिन्हें सब लोग बहन जी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री सुरेश सुंदर के घर मोसलमो ले पाल्मिये त्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाबुचिक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। डुलॉ लेन मेबर्ग में, डुलॉ लेन मेबर्ग में 46 साल के 46 years old के श्री सेविन्ना सामिना तापिल्ले, श्री सेविन सामिनाता फिल्ले जिन्हें सब लोग अन्ना के नाम से भी जानते थे और जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अटेंडेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दोपहर की 2 बजे, आज दोपहर की 2 बजे उनके पिताजी श्री आत्मानंद सोमी सामीनाथा फिल्ले के घर डुलॉ लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2। पाबू लेन 16 मील फॉरेस्ट साइड में, पाबू लेन 16 मील फॉरेस्ट साइड में 76 साल की 76 years old के श्री मनीलाल रांदा, श्री मनीलाल रांदा जिन्हें सब लोग सोनालाल के नाम से भी जानते थे और जो एक पूर्व पुलिस कॉर्पोरल अफसर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर की 2 बजे, आज दोपहर की 2 बजे उन्हीं के घर पाबू लेन से जी मिल फॉरेस्ट साइड से उठाकर इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कैमिलियो एवेन्यू क्वैत्र कोको में, कैमिलियो एवेन्यू क्वैत्र कोको में 64 साल की 64 years old की श्रीमती सरिता बिजुलाल, श्रीमती सरिता बिजलाल, पैदाइशी नाम चलोवी और जिन्हें सब लोग नीरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के
ढाई बजे, आज दोपहर के 2:30 बजे उन्हीं के घर

0: Camellia Avenue, Quatre Cocos et autres hackers thème s'inscrire qu'il y ait Belmar qui me chante pour Milija et Jiggy Cremation today at 2:30 PM. इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी एक गहरी संवेदना है।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5
2: ईस्ट West
3: 96.4
2: Center
3: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
4: Good morning. सुबह के 7 बजे है.
3: Timeless तड़का.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: Shameless Tadka.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: सुप्रभात, 7:06 हो चला है, हसीन समय है, ऊपर से संडे है, तो चलिए इसको मेमोरेबल बनाते हैं क्योंकि टाइमलेस गानों का सिलसिला जारी हो चुका है। 9 बजे तक इट्स नेमनी, तो यहीं पर मेक श्योर स्टे ट्यून्ड क्योंकि इसी आवर में आपको मिलने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स, तो यहीं पर स्टे ट्यून्ड एंड गानों का मजा लेते हैं एंड इस संडे को मनाते हैं ब्यूटिफुल।
2: Radio Musti, feels a Musti.

0: Shameless तड़का
1: RM2 Radio Musti।
2: एक दिन टाइमलेस सॉन्ग आपको वापस उन्हीं दिनों में ले जाने के लिए। यस मेरे प्यारे दोस्त, टाइम तो गुजर रही है फुल स्पीड में, लेकिन दिल अगर थम गया है तो उस फीलिंग को महसूस कीजिए ना, ना कि डिस्कार्ड। एक ही तो जिंदगी है, आप फुली जियो, महसूस करो और बस ऐसे ही वाइब करते रहो RM2 रेडियो मस्ती के साथ। जिंदगी यहीं पर है आपके उन लम्हों को ताज़ा बनाने के लिए। कुछ ही देर में आ रही है आपकी लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स।

0: ही पर स्टे ट्यून्ड जियो आरएम जो रेडियो मस्ती
1: टाइमलेस तड़का
2: आरएम टू
3: रेडियो मस्ती
1: टाइमलेस तड़का

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News,
3: Radio Musti in the mix.
2: चलिए अभी के लिए latest sports updates सुनते हैं विकास जी से. Good morning.
4: Good morning, Nilmani, and a very good morning to all sports fans. उम्मीद के मुताबिक Manchester City did it again. दर्द में ही सही किंतु फुल मेटल जैकेट यानी जैसा सोचा था वैसा ही हुआ. मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप जीत लिया. चेल्सी को मात्र एक गोल से हराकर पेप गार्डियोला ने सीजन की अपनी दूसरी ट्रॉफी उठाई. क्या गोल स्कोर किया, कमाल का गोल अंतोन सेमेन्यो ने, एक बैक हील फ्लिक गोल जिसके सामने चेल्सी का डिफेंस, चेल्सी का गोलकीपर अकबका गया. खेल के 72वें मिनट पर जाकर ये गोल बना. इससे पहले फर्स्ट हाफ में मैन सिटी एकदम हावी हो गया था चेल्सी पर. लगने लगा था कि गोलों की बरसात होगी, लेकिन सेकंड हाफ में द ब्लूज वापस लौट आए और उनकी ओर से भी थोड़ा बहुत डोमिनेशन रहा. लेकिन बाद में 72वें मिनट पर अंतोन सेमेन्यो का ये मात्र गोल और बंदा छा गया. अभी 8 साल पहले ही सेमेन्यो को एक नॉन लीग टीम में लोन पर भेजा गया था. फिर जनवरी में, इसी में साल के जनवरी महीने में, मैनचेस्टर सिटी ने बोर्नमुथ से उसे 62.5 मिलियन पाउंड में खरीदा. तब से 26-year-old अंतोन सेमेन्यो सिटी में तहलका मचा रहा है. गोल पे गोल यानी पैसा वसूल. मैनचेस्टर सिटी 1, चेल्सी 0. अब सारा ध्यान तीसरी ट्रॉफी यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग पर, जहां द सिटीजन्स आर्सेनल से अभी भी 2 अंक दूर है. अभी अगला मैच अब मंगलवार को खेला जाएगा बोर्नमुथ के खिलाफ. बोर्नमुथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, हर एक मैच एक फाइनल की तरह खेला जाएगा, खासतौर पे आर्सेनल के लिए जो आज अपना एक और मैच खेलने वाला है. सुनते रहिए. सो मैनचेस्टर सिटी को हार्दिक बधाई. किंतु चेल्सी ने भी धैर्य का धारण किया. सेकंड हाफ में वे भी गोल बना सकते थे और मैच के तुरंत बाद क्लब ने अपने नए संभावित कोच शाबी अलोंजो के अराइवल, उनके आगमन का ऐलान किया. सैद्धांतिक तौर पर इन प्रिंसिपल स्वीकृति मिल गई है, एग्रीमेंट हो गई है. ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले अगले 48 घंटों में शाबी अलोंजो चेल्सी का नया कोच बन जाएगा. यानी लिवरपूल वाले हाथ मलते रह गए. अलोंजो के आने से चेल्सी में खुशियाली तो लिवरपूल में मातम. द अलोंजो ड्रीम इज ओवर. क्लब ने, ऐसा मालूम पड़ता है कि ऑने स्लॉट को एक और मैंडेट देने का फैसला किया है. इसलिए मोहम्मद सलाह भी बोल पड़ा और रो पड़ा जाने से पहले. उसका एक आखिरी मैच है अभी अगले रविवार को ब्रैंडफोर्ड के खिलाफ. उम्मीद है कि उसको खेलने का मौका दिया जाए. बहुत कुछ उसने किया है लिवरपूल के लिए और वो कल बोल पड़ा. जाने से पहले उसने लिवरपूल में हैवी मेटल फुटबॉल यानी क्लब टाइप अटैकिंग फुटबॉल को वापस लाने की उम्मीद जताई, जिससे ओपोनेंट्स कभी डरा करते थे. फ्रॉम डाउटर्स टू बिलीवर्स उस समय हम लोग थे, अब फिर डाउटर्स बन गए हैं, ऐसा मोहम्मद सलाह ने कहा. यानी सलाह की सलाह सुनने योग्य है. और इस बीच माइकल कैरिक बनेगा नया परमानेंट हेड कोच.

मैनचेस्टर यूनाइटेड का। कल ही क्लब के बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने इस बात की स्वीकृति दी, फैसला ले लिया गया। माइकल कैरिक के बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर क्लब ने ये फैसला लिया है। अब कैरिक एक इनिशियल 2 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेगा आज परमानेंट हेड कोच ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। कोचों की बात हुई तो बता दी कि योजे मोरिनो का नाम भी रियल मैड्रिड के संतियागो बेनाबई में गुनगुनाया जा रहा है। बहुत संभव है कि वो फिर रियल मैड्रिड को कोच करने जाए। बेनफिका में उसकी यात्रा कल रात समाप्त हुई। हालांकि क्लब तीसरे स्थान पर पहुंचा, फिर भी इट्स एन अनबीटन सीजन फॉर योजे मोरिनो। एक भी हार नहीं, विन्स एंड ड्रॉज ओनली पूरा किया ये सीजन अनबीटन। फिर भी क्लब तीसरे स्थान पर आया, इसलिए अब बाय बाय योजे मोरिनो भी संतियागो बेनाबेयू में वापस लौट रहा है। कुछ और नतीजों की ओर बढ़ते हैं, खासतौर पर स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल कमाल हो गया। पूरे सीजन के अंतर्गत हार्ट्स टॉप पोजीशन पे था और आखिरी मैच में जाकर कल ये चैंपियनशिप समाप्त हुई। आखिरी मैच में सेल्टिक ने अपने सेल्टिक पार्क में हार्ट्स को 3-1 से हराकर हार्ट्स का दिल ही तोड़ दिया। अब तक कल तक हार्ट्स प्रीमियरशिप इस लीग के टॉप पोजीशन पर बना हुआ था, लेकिन सेल्टिक ने कल 3-1 से हराकर ये चैंपियनशिप फिर जीत ली। और यदि कल हार्ट्स ने ही खाता खोला 43rd मिनट पर शैंकलन की ओर से, तो 2 मिनट बाद फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर पेनाल्टी पर एंजल्स ने इक्वलाइज किया। यहां तक हार्ट्स चैंपियन बन रहा था, लेकिन 87 मिनट पर जाकर इनक्रेडिबल बट ट्रू माइदा ने दूसरा गोल स्कोर किया। वाह भी देखा गया, लेकिन गोल को अलाउट किया गया। और इंजरी टाइम के 8वें मिनट पर 98 मिनट पर जाकर सेल्टिक ने एक और कील ठोंकी। इट्स फाइनली सेल्टिक 3-1। सेल्टिक इज अगेन द चैंपियन ऑफ स्कॉटिश प्रीमियर लीग। सो स्कॉटलैंड में ये हुआ। बढ़ते हैं अब जर्मनी के बुंडेसलीगा की ओर, जहां कल हैरी केन ने फिर अपना असली मेटल दिखाया। कल बायर्न म्यूनिख ने एफसी कोलोन को 5-1 से परास्त किया। माइकल हैरी केन उसने 3 गोल स्कोर किए। ही हैज नाउ स्कोर्ड एन इनक्रेडिबल 63 गोल्स, 63 गोल इस सीजन अपने क्लब और देश के लिए केवल 55 मैचों में। और बुंडेसलीगा में 36 बुंडेसलीगा गोल केवल 31 मैचों में, 31 गेम्स 36 बुंडेसलीगा गोल, 58 इन ऑल कॉम्पिटिशन्स फॉर बायर्न म्यूनिख। कमाल का खिलाड़ी, उसको हार्दिक बधाई हैरी केन को। नतीजे सुनिए, बायर्न म्यूनिख 5-1, बायर लेवरकुसन 1, हैमबर्ग एसवी 1, बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख ने होफेनहाइम को 4-0 से तोड़ा, फ्रैंकफर्ट 2, स्टुटगार्ट 2, फ्रीबर्ग 4, लाइप्ज़िग 1, हाइडेनहाइम 0, माइंस 2, सिन पाउली की हार हुई, सिन पाउली 1, वुल्फ्सबर्ग 3, यूनियन बर्लिन ने ऑग्सबर्ग को 4-0 से हराया, और वर्डर ब्रेमेन 0, बोरुशिया डॉर्टमुंड 2। बाकी मैचों में, बाकी चैंपियनशिप में, इंडियन सुपर लीग में कल जो 2 मैच खेले गए उनमें बंगलुरु ने एवजा कर चेन्नई को 2-1 से हराया, तो उड़ीसा 2, पंजाब 3। सो इतना सब कुछ फुटबॉल को लेकर। टेनिस में 31 वर्षीय 31 ईयर ओल्ड एलिना ज्वितोलिना ने अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब हासिल किया। फाइनल में कोकोगाव को 6-4, 6-7 और 6-2 से हराकर यहां तक पहुंचने के लिए उसने विश्व नंबर 2 एलेना रायबाकिना, नंबर 3 ईगा स्वियातेक और कल नंबर 4 कोकोगाव को भी हराया। इसलिए हार्दिक बधाई एलिना ज्वितोलिना को। लड़कों में ऑल हेल यानिक सिनर, जिसने केवल 15 मिनटों में तीसरा सेट जीतकर इटालियन ओपन के फाइनल में कदम रखा। यानी सिनर ने डैनियल मेडवेडेव को 6-2, 5-7 और 6-4 से हराया। एक तीसरा सेट बचा हुआ था बारिश के कारण, और अपने प्रथम इटालियन ओपन फाइनल में वो पहुंचा, जहां उसका मुकाबला आज कैस्पर रूड से होगा, जिसने लुसियानो डाजेरी को 6-1 और 6-1 से परास्त किया। एंड फाइनली क्रिकेट में, कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल गुजरात टाइटंस को 29 रनों से परास्त किया। शुभमन गिल के शानदार 85 रनों के बावजूद वे कोलकाता के 247 रनों का पीछा नहीं कर पाए। इधर

0: फिन एलन ने 93 और अंकरेश रघुवंशी ने 82 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को 29-29 रन से जितवा दिया। आज इसी आईपीएल में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, तो दिल्ली कैपिटल्स खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: Qualité déco, puis annonce-vous sur Mega Sales pour 2 semaines seulement. Mob à portier 25 roupies, granit à portier 2000 roupies, sanitaire à portier 3500 roupies, porc et laminé et SPC. Avec la pause gratuite s'il vous plaît. Et beaucoup des autres super offres pour toute la case. Qualité déco, et n'a tout pour décoration intérieure, extérieure, recette parvis décoratif, quartz, robinetterie, la lumière, meubles, salle de bain et beaucoup des autres encore. Visite-nous tous showrooms à travers l'île. Fast type de paiement disponible. Plus renseignements, l'autre page Facebook, Qualité déco.
3: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
4: Nile nile ambar par chand jab aaye pyar barsa
5: purane gaane sirf sur aur alfaz nahi hote.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: Get ready for the biggest World Cup ever!
4: 2026 FIFA World Cup.
3: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
4: चलिए
3: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
4: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
5: Road to World Cup 2026, चलो वर्ल्ड कप की ओर. G-25 यानी 25 दिन रह गए हैं, एक के बाद एक 26 खिलाड़ियों की लिस्ट फीफा को दी जा रही है. वर्ल्ड कप में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है, कुछ लोगों का साकार होता है, पर कुछ खिलाड़ी ऐसे मौके मिस कर जाते हैं. इनमें से है लिवरपूल का इकिची के इंजुरी के कारण जो फ्रांस के स्क्वाड में नहीं है, साथ में ब्राजील में रोड्रिगो, नेदरलैंड्स में डिफेंडर माचिस डेलिट, जाबी साइमंस, जर्मनी से सेर्ज जिनाब्री, ब्राजील से इस्तावाओ, जापान से मितोमा और मिनामिनो. दूसरी ओर कुछ ऐसे नामी खिलाड़ी भी हैं जिनकी टीमें क्वालिफाई नहीं हुई. इनमें हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, विक्टर ओसिमहेन, ग्वानलिगी डोनारूमा, वराट्स्केलिया और डोमिनिक ज़ोबोस्लाई. इन सब खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप में न खेलना सदमे से कम नहीं है. ग्रुप ई की बात करें, इसमें है चार बार चैंपियन जर्मनी, डेब्यूटेंट कुआसाओ, अफ्रीकन पावर हाउस आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर. हमेशा की तरह द नेशनल मैनशाफ्ट वर्ल्ड कप जीतने के लिए आते हैं. इस टीम में फ्लोरियन वर्ट्स, यमाल मुसियाला, अंतोनियो रुडिगर, वेटरन गोलकीपर मैनुएल ड्यूयर, फिर जोशुआ किमिच, काय हावर्ट्ज़, लेरोय साने आदि नामी खिलाड़ी है. पिछले वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गई थी जापान से हारकर. इक्वाडोर की टीम क्वालिफिकेशन राउंड में रन अप बनकर क्वालिफाई हुई थी. इस टीम को इक्वाडोर का गोल्डन जेनरेशन कहा जाता है. इसमें सॉलिड डिफेंस और हाई एनर्जी एलीट मिडफील्डर हैं. पेरिस सेंट जर्मेन से विलियन पाचो, बायर लेवरकुसन से पियरो हिंकापिए, एसी मिलान से पेरविस एस्टुपियन, फेलिक्स टोरेस, चेल्सी से कायसेडो, साथ में इनेर वेलेंसिया, प्लाटा और पाइज है. पिछले वर्ल्ड कप में इक्वाडोर की टीम लाटरी नॉकआउट राउंड से ही बाहर हो गई थी. एक कुआसाओ की टीम पहली बार वर्ल्ड कप में खेलेगी, सबसे कम आबादी वाली टीम वर्ल्ड कप में, द स्मॉलेस्ट नेशन बाय पॉपुलेशन

0: ever to qualify for FIFA World Cup. यहाँ केवल 156,000 लोग रहते हैं, 156,000 only. Caribbean island है, CONCACAF qualification में 7 जीते हैं, 3 draw. इस miracle के पीछे Dick Advocaat का दिमाग है. इस टीम में ज्यादा लोकल खिलाड़ी हैं, पर PSV Eindhoven से Armando Obispo, Burnley से Shurandi Sambo, Sheffield United से Tahith Chong, Middlesbrough से Hansen भी हैं. और इस ग्रुप की चौथी टीम अफ्रीकी महारथी Ivory Coast, Les Elephants 12 साल बाद वर्ल्ड कप में वापस आ रही हैं. 2023 में अफगान चैंपियन, क्वालिफाइंग राउंड में 8 जीते, 2 ड्रॉ, 0 लॉस, 10 मैचों में एक गोल भी कंसीड नहीं कर पाई थी ये टीम. नामी खिलाड़ियों में है एल आली से कप्तान फ्रैंक केसिये, रैन से सेको फुफाना, एस रोमा से एवान एंडिका, मोनाको से साइमन अदिंग्रा और मैनचेस्टर यूनाइटेड से अहमद जालू. सो ग्रुप ई में जर्मनी, इक्वाडो, कुरासाओ और Ivory Coast. Road to World Cup 2026. हमारे साथ सुनते रहिए.
1: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई. Catch all the news, views, previews, and latest updates.

0: तनु ले आपके लिए सिर्फ बेस्ट गाने ही धुन के ला रहे हैं। टाइमलेस धुनों को और एंजॉय करने के लिए मिलते हैं सेकंड आवर में। अभी इट्स ऑलमोस्ट टाइम भोजपुरी समाचार का, तो यहीं पर स्टे ट्यून्ड आरएम जो रेडियो मस्ती पर।
1: Radio Musty feels a musty.

0: This mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: सुबह के 8 बजे हैं।
3: घोटाला और धोखाधड़ी के मामला में तुरंत आल तेजी के लेके अपन चेतावनी जारी कर लन। 2-3 दिन पहले वकील आशिक तुराबाली साइबर क्राइम के जाल में फंस गए रहल। इबरिस के मॉकोस प्लस प्लेटफॉर्म के बगल से जारी करल गल आंकड़ा के अनुसार ऑनलाइन स्कैम और धोखाधड़ी के 242 मामला, चोरी के पहचान के 217 मामला और फिशिंग माने नकली या फिर फर्जी वेबसाइट के 15 मामला दर्ज करल गल। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष के भविष्य की दिशा के लेके अकेले अंतिम फैसला नहीं लिया। गल सुके फजर के एकर सीईओ कुणाल नायक हमनी के सहयोगी सांताना पोसनो के संगे एगो मॉर्निंग इंटरव्यू में बोलन कि अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारी लोगन, सरकार और संसद के रही। मॉरिशस में अनुसंधान और नवाचार माने इनोवेशन खातिर ये गो नवा युग की शुरुआत है। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल के पारित कर लेवल गल बाती जे वैज्ञानिक अनुसंधान के केंद्रित करे के और नवाचार के आर जस्ती बढ़ावा देवे के दिशा में एगो राष्ट्रीय संस्थान के रास्ता साफ हो गल बाती। उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्री कविराज सुको के अनुसार इस सुधार के उद्देश्य है मॉरिशस के एगो निमन रणनीतिक निकाय देवे के जे राष्ट्रीय चुनौती के ठोस समाधान खोजे खातिर शोधकर्ता के संगे काम करे के है। तो दूसर देश में बैंकॉक में काल सामदी के एगो ट्रेन के टक्कर हो गल बाते जेकर बाद आके चपेट में 8 जना के मौत हो गल बाते और 1 करीब 5 आदमी के कस के घाव लग गल बाते। तो एक रेवे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्ते और प्रणाम।
4: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: गुड मॉर्निंग, संडे 17th ऑफ मे, चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: आम हालत, दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी, जबकि दिन के दौरान पूर्वी ढलानों पर साथ ही साथ सेंट्रल प्लाटू और दक्षिण में वर्षा होने की आशंका है। ऊंचे इलाके पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान ऊंचाई पर थोड़े से बादल घिराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय लगभग 6:30 बजे, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier plus facilement et toujours au meilleur prix. Et profitez-en, la fête du pain a déjà commencé chez Winners et ça continue jusqu'au 31. Pour encore plus de bons moments autour de produits que vous aimez. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
6: On est tous Winners!
1: RM2
4: Radio Musti.

0: Shameless तड़का
1: RM2 Radio Mastery
2: दीवाना दिल ऊपर से मौसम है रोमांटिक टाइमलेस गाने भी एक्सेंचुएट कर रहे हैं इस समा को। आई होप कि आप ठीक से सो पाए। अगर टायर्ड टायर्ड फील कर रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं आई, अभी भी टाइम है चादर ओढ़ के फिर से सोने के लिए। जस्ट किडिंग यार, आपको जगाने के लिए टाइमलेस तड़का यही पर है। 9 बजे तक आपके लिए टाइमलेस हिट्स लाते रहेंगे, आप बस ट्यून इन रहना। यही RM2 रेडियो मस्ती पर एंड कुछ ही देर में 5491294 पर आपके मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके कुछ डेडिकेशंस है, डू सेंड अस एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक।
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
3: रेडियो मस्ती
0: टाइमलेस तड़का।

0: टाइमलेस तड़का
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: जी हाँ, इस योर टाइमलेस तड़का ना अभी के लिए मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं। वी हैव मैसेजेस कमिंग अप फ्रॉम श्वेता हुकुम जी। वो बोना कैसी है डेडिकेटिंग नेक्स्ट गाना अपने हस्बैंड रोशन के लिए, और आप हैं उनकी प्यारी वाइफी रानी, और आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। सो क्यूट है। वी हैव मनीषा सुकन जी, डेडिकेट करना चाहते हैं गाना उनके हस्बैंड ऋषि सुकन के लिए। आज है उनका जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, एंड आप विश कर रहे हैं उन्हें ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, बेस्ट विशेज बीवी आयुषी अनुषी की तरफ से, डॉटर्स अवनी एंड अदिति। एंड वी हैव ऑल्सो श्यामा, रितेश, रानी, थानिश, आदर्श, राधा, निश्ता, जयश्री, युश्रा, वशिष, याशना एंड ऑल जीवन फैमिली बेलिया से जो हमें सुन रहे हैं अभी, कनेक्टेड है हमारे साथ वंस अगेन या लेश सुबह से एंड एंजॉय कर रहे हैं। वी हैव अनदर मैसेज कमिंग फ्रॉम सुनीता जी, जो कि पिछित रिव्या की रहने वाली है, एंड आप मांग रहे हैं गाना अपनी बेटी नुतिश्ता के लिए। अश्विन, हर्षी, निवानशी, दिगंबर फैमिली, मामा मोहिनी, ब्रदर गणेश,

0: फैमिली सिस्टर्स सुरेखा हुलाश विकी निखिल तिशा यानेश सोहन रंजाया कुणाल रक्षा प्रणव सीताराम एंड वी हैव कुमार डाविचिन जी जो हर रोज की तरह एंजॉय कर रहे हैं अपना हॉट हॉट टी एंड एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को एट द सेम टाइम एंड वो डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना अपने लवली पापा श्याम डाविचिन के लिए जो कि परिवार करने के रहने वाले हैं तो ऐसे ही स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड विद अस आपके लिए अमेजिंग गानों का सिलेक्शन रेडी से है तो आप बस वाइब करते रहिए और इस संडे को मनाते हैं फन डे
1: Radio Musty feels a musty.

0: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: आज का रूल सिंपल है, टिका हुआ है पॉजिटिव वाइब्स पर। तो खुद पर काम करते रहो। लोगों का ओपिनियन तो सीजन की तरह चेंज होता रहता है। आप अपना देखो और खुश रहो।
0: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2, Radio Masti.

0: Timeless
1: 떨까 RM2 Radio Musti
2: ये सुबह का टाइम है। अगर आप उठ गए हैं, सोच रहे हैं कि संडे को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। यस, बहुत सारे डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, जैसे कि आज है वर्ल्ड बेकिंग डे। अगर क्रेविंग हो रही है कुछ शुगरी का, तो आप कोशिश करो टू मेक दैट एट होम। घर पर ही मम्मी या बहनों की हेल्प लेके कुछ ट्राई ज़रूर करें। और हम जो वीडियो मस्ती यहीं पर है आपके लिए, अगर दांत पड़ती है वो भी बता देना, लेकिन आप ट्राई करें ज़रूर कुछ बेक करना आज। एंड डू सेंड अस कि कैसा बनाए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आप क्या कर रहे हो इस संडे को। तो यहीं पर स्टे ट्यून RM2 वीडियो मस्ती पर। टाइमलेस हिट्स ऑन गोइंग है अभी।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
4: हिट्स, म्यूजिक ओनली
3: फील्स अ मस्ती।

0: टाइमलेस तड़का।
1: RM2 Radio Musti।
2: इसी गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर मी टू से बाय एंड फॉर हंसनी टू से हेलो। शी इज़ कमिंग नेक्स्ट आपकी बॉली ब्रंच के लिए। सो मेक श्योर कि आप यही पर आर एम जो रेडियो मस्ती पर जुड़े रहिए क्योंकि आपके लिए बॉली हिट्स नेक्स्ट आ रहे हैं। हैव अ ग्रेट ग्रेट संडे।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: Wish you all a very good morning. Check your time. सुबह के ठीक 9 बजे हैं. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ. आपको नमस्कार अभी.
4: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. आईसीटी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस, जिसे आमतौर पर सेट एमयू के नाम से जाना जाता है, उसने ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी के मामलों में अचानक आई तेजी को लेकर अपनी चेतावनी जारी की है. कुछ दिन पहले वकील आशिक तुगाबाली साइबर क्राइम के जाल में फंस गए थे. इस मामले की शिकायत सीसीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट में दर्ज कराई गई है. मॉकस प्लस प्लेटफॉर्म

0: 2026 के आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन स्कैम और धोखाधड़ी के 242 मामले, पहचान की चोरी के 217 मामले और फिशिंग के 15 मामले दर्ज किए गए। पीतों की रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला को सीसीआईडी की साइबर क्राइम यूनिट ने व्हाट्सएप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। जांच तब शुरू हुई जब एक पीड़ित का व्हाट्सएप अकाउंट तब हैक हो गया जब उसने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ओटीपी साझा कर दिया था। इसके बाद पीड़ित के कॉन्टैक्ट्स को पैसे ट्रांसफर करने की मांग करते हुए धोखाधड़ी वाले संदेश भेजे गए। जांचकर्ता संदिग्ध महिला की पहचान करने में सफल रहे। उसे 15 मई 2026 को रिवेजों पर अदालत में पेश किया गया जहां पर उस पर इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले में मिली भगत का अस्थायी आरोप लगाया गया और उसे वापस पुलिस हिरासत में भेजा गया। ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य उद्योग मंत्रालय को इस पर पूरा भरोसा है और मछुआरों को लगूनों से आगे बढ़कर गहरे समुद्र में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए मंत्रालय ठोस कदम उठा रहा है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसे पिछले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके नाव की आउटबोट मोटर मरम्मत के लायक नहीं रह गई। इस मदद को लाभार्थियों ने एक बड़ी राहत के रूप में लिया है और इसका सकारात्मक रूप से स्वागत किया है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेदरलैंड्स के राजा विलम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से शाही महल में मुलाकात की है और डिजिटल प्रौद्योगिकी, इनोवेशन यानी कि नवाचार, फिनटेक और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यूएई में एक संक्षिप्त ठहराव के बाद नेदरलैंड्स पहुंचे और उनकी 5 देशों की यात्रा का दूसरा चरण है जिसमें स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी शामिल है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: नंबर 20 जानेट स्ट्रीट विल में कौची मिलितिया में, नंबर 20 जानेट स्ट्रीट विल में कौची मिलितिया में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री रामदत्त, श्रीमती सावित्री रामदत्त पैदाइशी नाम रामदत्त और जिन्हें सब लोग पिटकी के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह के 9:30 बजे ही के घर नंबर 20 जानेट स्ट्रीट विल्मे कौची मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल्मे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। मेरोंटिलेन डॉक्टर मेयर स्ट्रीट फ्लोरियाल में, मेरोंटिलेन डॉक्टर मेयर स्ट्रीट फ्लोरियाल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की कुमारी पसमंती लीलोधारी, कुमारी पसमंती लीलोधारी जिन्हें सब लोग ज्ञान के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उन्हीं के घर यानी मेरोंटी लेन डॉक्टर मेयर स्ट्रीट फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 रेडियो मस्ती। बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Holly Branch, RM2, Radio Musti.
1: Warm welcome on Radio Musti. Yes, this is our Bali Brunch. Sunday का ये दिन जो आया है, celebrating this fabulous weekend. और आज के लिए मुझे पता है आप पूनम के इंतजार में हैं, लेकिन पूनम will be here. She will catch up at noon. यहाँ पर हंसनी तो आ गई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए. I'll be here to entertain you and musical show है आपका Bali Brunch, जहाँ पर हम बिल्कुल breakfast को enjoy करने वाले हैं. So क्या हाल चाल, ready हो कि सब ठीक है? अच्छी शुरुआत तो हो गई है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी ठीक बनाएंगे मूड को और भी मस्त ज़बरदस्त बनाएंगे विद आवर म्यूजिक जो हम चलाते रहेंगे टू मेक इट फन. दिस इज द वीकेंड राइट, और संडे टाइम इज फैमिली टाइम, इट्स फन टाइम. तो इसी में जुड़ गए हैं हमारे गाने, जुड़ गई है आपकी हंसनी, एंड आई बी विद यू टू विश यू ऑल वंडरफुल स्टार्ट. और 17th ऑफ मे कहाँ है हमारे बर्थडे बॉयज, बर्थडे गर्ल्स अभी भी सो रहे हैं, चलिए उनको जगाने का मौका जो हमको मिला है, टू गिव देम अ वेक अप कॉल एंड टू विश देम लाइव ऑन रेडियो. ये तो होने वाला है आपके मैसेजेस द्वारा, इसी के लिए हम करेंगे आप लोगों का इंतजार. राइट, आई विल बी वेटिंग, आपका इंतजार रहेगा.

वो वेलकम अगेन ऑन अ रेडियो मस्ती यहाँ पे अनलिमिटेड फन के साथ, क्योंकि आप तो कनेक्टेड हो ना विद द नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन जो हमारा और आपका रेडियो मस्ती है। और अभी हम सेट कर रहे हैं एकदम जबरदस्त मूड में आज का बॉली ब्रंच सेलिब्रेटिंग योर स्पेशल डेट। तो हम हैं आपके साथ धूम मचाने के लिए, हमें तो चाहिए वो बहाना टू सेलिब्रेट एंड टू मेक इट फन, टू मेक इट स्पेशल। सो जहाँ पर भी हमारे स्पेशल पीपल जुड़े हुए हैं और आज उनका स्पेशल डेट है, धूमधाम से मनाएंगे आपके जन्मदिन को और बढ़ेंगे पायोत की तरफ, जहाँ मिस्टर महेन संपत सेलिब्रेट कर रहा है आज अपना स्पेशल डेट। लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू महेन जी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे आपको। हमेशा यू स्टे इन गुड हेल्थ, यू स्टे फिट, हैप्पी, जॉवियल एंड स्टे हम्बल एज यू आर। And wishing you all the very best. यहाँ पे जो भी आप चाहे जिंदगी में बस आपको मिल जाए। And celebrating this fun day आपके साथ आपके two darlings युवराज एंड युवंश तो आए हैं अपने स्वीट पापा को विश करने के लिए a very happy birthday. And also we have got the wishes coming from Hansini and all the families. We have Sampat families, Manbhut परिवार and Pomisa families की तरफ से भी lots of good wishes to you. Have fun, have a blast and keep enjoying with our radio. Musti.

0: Holly Branch, RM2, Radio Masti.
1: That was a romantic touch. जाने दिल में कब से है तो यहाँ पर मूवी का नाम मुझसे दोस्ती करोगे. अगर आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है सो हियर वी कम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए फ्रॉम रेडियो मस्ती. यहाँ पर ऑन द माइक आरजे हंसनी एंड आई एम विद यू फॉर आज का बॉली ब्रंच सेलिब्रेटिंग योर मस्त वीकेंड. अगर मस्त ही माहौल तो जबरदस्त गाने तो बनते हैं ना. घर की साफ सफाई बस चालू हो गई है, लगे रहो जी बो कुहार. एंड हम बढ़ेंगे मिनल की ओर जहाँ पर रेडियो मस्ती इज ऑन हाई वॉल्यूम राइट. हेलो अभिजीत जी, कैसे हो? विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे विशेज. विल श्योरली कन्वे इट टू महेन. सेलिब्रेटिंग मई महीना विद लॉट्स ऑफ मार्वेलस सरप्राइजेस राइट. और चलते चलते आप लोगों से मिलते रहेंगे. लेट्स क्रिएट सम ग्रेटेस्ट सुवेनियर्स फॉर द फ्यूचर. Happy day, happy fun day, happy Sunday. It's Bolly Brunch.

0: Polly Branch RM2 Radio Masti.
1: Welcoming you on Radio Masti, and abhi I've got some dedications right to celebrate this fun day, Sunday wala din. Ravi ji kaise ho? Ravi, Ravi ji ka warm welcome. Hum to aaye hai ji is morning ko aur bhi zabardast banane ke liye with Bolly Brunch. Really hope you're enjoying. Aapka welcome hai, wishing you a great start. Good morning, Auntie Hansini. Good morning, Yalesh beta. Kaise ho? Really hope ki sab theek hai. Acche se aap ho is samay and enjoying breakfast ya fir aapne एंजॉय कर लिया है अगर आप अर्ली राइजर हो तो. हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम. और अगला जो गाना है वो डेफिनेटली आपके लिए चल जाएगा. बिग हेलो टू मिस्टर कमल, कैसे हो? रियली होप कि आप की सुबह भी एकदम अच्छी सिखिल गई है और गाना एकदम ज़बरदस्त आपके लिए चल पड़ेगा. थैंक यू फॉर योर मैसेज. यहाँ पे संदीप जी का साथ है फ्रॉम कप मालेरू. आई एम स्टिल एट वर्क and going strong thanks to Radio Masti jo hamara hamsafar ban jata hai, ye to hai. Thank you Sandeep ji for this beautiful comment on Radio Masti. Yahan par bahut hi khush hua hai aapke is lovely support ko paakar. Waise dosti ka haath to humne badha liya hai kyunki hum to mante hain dost wahi hai jo har mushkil mein aapka saath bas tham leta hai. सच्चा दोस्त हर राह में आपका साथ तो देता रहता है ना, और कभी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि हमारा ये मानना है, वी स्ट्रॉन्गली फील और ये मानते भी तो है कि दोस्ती वो रिश्ता है जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ महसूस करने की होती है.

0: तो यहाँ पे दोस्ती को हम निभाते रहेंगे, ये जो स्वीट बंधन है हमारा और आपका, थैंक्स टू रेडियो मस्ती। यहाँ पे हंसनी का साथ निभाते रहिए, आप अभी अपनों को याद करें, स्पेशल वन को याद करें, दिस इज अ चांस उन लोगों को और भी खास महसूस करवाने के लिए। राइट ऑन 549-1294, आई एम वेटिंग फॉर यू।
1: RM2 Radio Masti

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: Yes, let's enjoy this musty, let's enjoy this fun for this lovely weekend. Or chalte hai Cascavel, enjoying the fun. Wahan par we have Veena ji, warm welcome to you, pranam. And it's like a celebrating weekend, bete ke yahan. So warm welcome to Veena Sambhu aur unke sabhi parivaron ke liye bas ek madmast gana chal pada hai. For two grandsons, Saki Ansh and Krishay, hello my boys, really hope ki sab theek hai. Enjoying with daddy ma. साथ में है कोमल कुशल और पूरे संभु परिवार के लिए बिल्कुल एक जबरदस्त गाना. आप सभी को वो वीकेंड हम विश कर रहे हैं परिवार के लिए हम लेकर आए हैं ओनली द बेस्ट ऑफ विशेस. टेक गुड केयर एंड एंजॉय.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Wish you all a very good morning. Check your time. Din ke theek das baje. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ आपको नमस्कार अभी
7: नमस्कार हंसिनी श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी, ये स्पष्टीकरण शुक्रवार सुबह इसके सीईओ कुणाल नायक ने हमारी सहयोगी संताना पोसेनो के साथ मॉर्निंग इंटरव्यू में दिया। उनके अनुसार नैडेक की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना, डेटा का एनालिसिस करना, विभिन्न संबंधित के साथ मिलकर काम करना और सिफारिशें तैयार करना है। विशेष रूप से नेशनल ड्रग मास्टर प्लान और गांजा सहित ड्रग्स से जुड़ी नीतियों पर चल रही विचार विमर्श के ढांचे के भीतर। परंतु कुणाल नायक

0: ने इस बात पर ज्यादा बल दिया कि अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों, सरकार और संसद का होगा। मॉरिशस में अनुसंधान और नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल को पारित कर दिया गया है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को केंद्रित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान मंत्री कविराज सुको के अनुसार इस सुधार का उद्देश्य मॉरिशस को एक अधिक रणनीतिक निकाय प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय चुनौतियों के ठोस समाधान खोजने के लिए शोधकर्ताओं को एक साथ लाने में सक्षम हो। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कई अन्य संस्थानों के सहयोग से ओम्बड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के दफ्तर 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए एक लघु वीडियो प्रतियोगिता शुरू कर रहा है, लाइफ योर लाइफ मैटर्स नुलावी प्लिय पोतों की लाद्रोग विषय के तहत प्रतिभागियों को ड्रग्स के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा। ये पहल 2 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स की अवधारणा के तहत तैयार की गई है। यह प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता और भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों, विशेष संस्थानों तथा गैर औपचारिक शिक्षा क्षेत्र के छात्र भाग ले सकते हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और नाइजीरिया के सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार रात आतंकी संगठन ISIS का उप प्रमुख अबू बिलाल अलमिनू की मारा गया। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाइजीरिया के उनके समकक्ष बला अहमद तिनुबुडू ने दी है। ट्रंप के निर्देश पर बहादुर अमरीकी सैनिकों और नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने जटिल कार्रवाई में लड़ाई के मैदान में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे आतंकी को मार गिराया। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनते हैं। चोइटन रोड लिस्पेरेंस काउची मिलिटिया में, चोइटन रोड लिस्पेरेंस काउची मिलिटिया में 59 साल की 59 years old की श्रीमती जयवंती दुंदी पैदाइशी नाम लक्सिमो और जिन्हें सब लोग रामबाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भाई श्री जयराज अप्पा के घर चोइटन रोड लिस्पेरेंस काउची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्पेरेंस की शमशान भूमि ली जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान फ्लैक में 78 years old की श्रीमती लक्ष्मी मनीसर चंद्रा पैदाइशी नाम दुनमुन और जिन्हें सब लोग निवोद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के सवा ग्यारह बजे उनके बेटे श्री नितेश चंद्रा के घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बूशों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:15 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RN2 रेडियो मस्ती।
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
3: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती, बॉडी ब्रंच, RM2, रेडियो मस्ती।

0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.
1: Well, welcome again. We are already in the second hour of Bali Brunch, celebrating this fabulous weekend. Kya hal chal hai, my dear friends? Really hope ki sab theek hai. Achhi shuruaat to ho gayi hai. और फैमिली टाइम को बस सेंटर करने के लिए वी आर ऑल सेट. और अगर आपके यहाँ कुछ है समथिंग स्पेशल, शादी में जाना है, सगाई टाइम या फिर फैमिली फंक्शंस में बस आप जाएंगे थोड़ी देर के बाद, तैयारियाँ चल रही हैं, मे बी अभी कुछ घर की साफ सफाई चल रही है, इसके बाद तैयार तो होना है. लेकिन हमारे लेडीज़ कुछ तो ऑलरेडी ब्यूटी पार्लर्स में हैं. ये तो है, लगे रहो जी. ये तो अच्छा वक्त आता है टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ्स. सम मी टाइम जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक मोर ग्लैमरस. So a big hello to all my beautiful ladies and lots of good wishes coming from Hansini and all the team jo yahan par shamil hai aapke sath, jahan par bhi aap is samay connected ho. Dosti jo hai hum nibhate rahenge aapke sath. Jo dosti hai wo to bilkul ek khazana jaisa hota hai, jise jitna baato utna hi badhta hai. वो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो पल जो हम अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं. सो लेट्स मेक इट स्पेशल. जो टाइम अभी हम बिता रहे हैं ये तो हमारा प्रेजेंट बन गया है, और हम जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, इट विल बी लाइक मेमोरीज फॉर द फ्यूचर. तो ये तो आपके बस में है कैसे मेमोरीज आपको चाहिए इन द फ्यूचर, अच्छे या फिर बुरे. लेकिन हम तो मानते हैं कि आपको सिर्फ अच्छे ही चाहेंगे, राइट? सो वी आर हियर टू शेयर द लाइट, पीस, हैप्पीनेस ऑल अराउंड. जहां पर भी हमारा साथ जारी हो गया है, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू रेडियो मस्ती के साथ फॉर आज का बॉली ब्रंच. यहां पे हंसनी है आपके संग अप टिल 11. सो स्टे वेल कनेक्टेड एंड कीप एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ म्यूजिक राइट हियर.
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: Right, you're just connecting with the best of music right here on Radio Misty for आज का Bolly Brunch, right? यहाँ पर हंसनी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है सुबह से, right? और अभी कुछ fashion tip के बारे में अगर आप जानेंगे तो अच्छा लगेगा ना। Actually, it's like wedding season around, तो कैसे कपड़े को पहना जाए and how to look more glamorous, है ना पूनम? पूनम हमारे साथ जुड़ गई है। Hello जी, welcome, wish you a very good morning.
3: Very good morning everyone. Hi, Hansini, कैसे हो जी?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर फैशन के बारे में कुछ है पूनम जो आपके स्टाइल को यहाँ पर बढ़ाने के लिए बिल्कुल मदद करने वाली है।
3: क्या बात है, क्या बात है?
2: सिंपल, वेरी सिंपल बट स्टाइलिश लगे। सिंपल बट स्टाइलिश और कम चीजों में भी हम बिल्कुल आकर्षित ऑफकोर्स लग सकते हैं। एंड जैसे कि हम अपने स्किन टोन के बारे में, यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर अबाउट योर स्किन टोन, राइट? अपने स्किन टोन के हिसाब से आपको रंग चुनना है, ये तो सही बात हो गया है। हल्के रंग गर्मियों में लगाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल कम्फी हो जाएगा। हल्के रंग गर्मियों में और गहरे रंग सर्दियों में बिल्कुल अच्छे लगते हैं। सही जूते, बेल्ट, घड़ी या फिर गहने के बारे में अगर आप सोचेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि कपड़ों के साथ बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। अगर आपके जो कपड़े हैं काफी हैवी है सो आपके ज्वेलरी जो है कुछ लाइट होना चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल लाइट होना चाहिए। और सबसे पहले ना बॉयज के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा टिप होता है कि जैसे उनके पास लेदर बेल्ट होती है तो कई बार वो क्या होता है पुरानी लगने लगती है, वाइट वाइट हो जाती है, उस पर वो क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल लगाओ, अच्छे से कॉटन से उसको मस्टर्ड ऑयल लगाओ और उसको धूप में डाल दो 2-3 दिन। आप बिलीव में ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल न्यू हो गई।
2: अच्छी, थैंक यू सो मच पूनम फॉर ब्रिंगिंग दिस प्रेशियस टिप। यस, हमारे जितने भी गाइस इस समय जुड़े हुए हैं एंड या इट्स वेडिंग सीजन ना, सो हाउ टू लुक कूल, तो मे बी एक अच्छा सा ब्लेजर, मे बी अ वाइट शर्ट एंड नीली जीन्स।
3: बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, स्मार्टी बॉय कोई होना चाहिए।
2: सो ये हो गया है आज का फैशन टिप विद पूनम एंड हंसनी ऑन रेडियो मस्ती।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: RM2
1: Radio Musti Feels a Musti
2: Body Brunch RM2 Radio Musti.

0: Awesome dedication. Good morning. Very good morning to you too. आज बेटे अंश. आज अंश बेटा 5 साल का हो गया है. Hello बेटा. Happy birthday आपको. Lots of good wishes coming from lovely mama Vishti, from dad Akash और सभी मोहन सिंह families जो हालन से है. Lots of good wishes लेकर आए हैं यहाँ पर. God bless you और अगला गाना definitely for you. Hi Hansini. Hello. A great selection for this Sunday. Hey, thank you very much for the appreciation. Next message. Hi Hansini. Hi Kishan ji ka saath hai from Suriname. Gana hai for wife Mala ke liye for 2 daughters Gia and Ria. That's very sweet. Have a cute weekend. Good morning to everyone from Kavita, wishing Patidev happy birthday from beta Aditya, from behen Pitki aur sabhi biyari families aaye hai to wish आप के पतिदेव को हैप्पी बर्थडे, उनको विश करने के लिए. राइट, एस्पिरेंस चलेंगे. विशिंग मौसी रोशनी. मैसेज कुछ अधूरा सा आया है. रिक्वेस्ट टू सेंड मी अगेन. आई वुड लाइक टू रीड योर मैसेज. हेलो टू बेस्ट एफएम. अच्छा, जो बन गया है अभी रेडियो मस्ती. बिल्कुल, आपका वेलकम. यहाँ पर गाना है फॉर लवली फैमिली, फॉर शीना, अक्षय, अनिष्का, ऋषिका, अभी एंड पापा सत्यदेव के लिए. थैंक यू फॉर द मैसेज. फॉर मम रेनू ऑफ पालमा. हेलो जी, कुकिंग वेज बिरयानी. अजीवा जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, वो यहाँ तक आ रही है. वेरी नाइस कुकिंग निर्मला जी. और साथ में डिसर्ट भी है. आज आप बना रही हो रसमलाई. हम तो आ रहे हैं आफ्टर द शो. राइट निर्मला जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द लव फॉर मामा रेनू. और सब परिवार जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं फॉर आज का बॉली ब्रंच.
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: Bali Branch RM2 Radio Masti.
1: इतने सारे मैसेजेस है कि हमको आना पड़ा लेकर द लास्ट राउंड ऑफ डेडिकेशन. थैंक यू फॉर सेंडिंग योर लव ऑन द 5491294. प्रणाम हंसनी जी, प्रणाम टू यू टू. हैप्पी बर्थडे टू भाई विकाश. लॉट्स ऑफ गुड विशेस है फ्रॉम दीदी रोशी, फ्रॉम राज ललिनी. वी हैव आनंद, सलोनी, अनीता, सुनीता एंड कुशल सेंडिंग द बेस्ट विशेस टू मिस्टर विकाश. हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी बधाइयाँ हैं आपके लिए. और इसके बाद चलते हैं रिवेरी क्रेओल. वेलकम इज साधना जी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, थैंक यू फॉर योर अच्छे से कॉफ़ी जो आपने भेजे हैं, वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग टू यू. गाना है फॉर लवली जिया के लिए, फॉर गौरव, तेजल, क्रियन और सबसे छोटा है तस्वीक. एंड रिवेरी क्रेओल से जितने भी परिवार यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबका वेलकम. एंड यहाँ पर हमने देखा है योर प्रोफाइल पिक्चर, जो टू मास्टर्स है, लिटिल एंजल्स, बहुत ही क्यूट है, गॉड ब्लेस. और अगला जो गाना है वो स्पेशली उनके लिए चल जाएगा. एंड वी हैव श्रेष्ठा फ्रॉम फोजिसाक. अच्छा, आप तो आई हो दूर से लेकिन पास तो है रेडियो मस्ती के. श्रेष्ठा दानी का वार्म वेलकम. गाना है आपके पति दलगीश के लिए और सभी दानी परिवार के लिए भी. वी हैव गॉट अ स्पेशल वन कमिंग अप फॉर अब्दुल एंड सरा बानू. थैंक यू फॉर योर विश. और गाना स्पेशली आपके लिए. Happy Sunday to everyone. Now we have Veena Jagisaw from Bilvi Mughal. आपके पूरे परिवारों के लिए एक nice गाना ये तो बनता है जी आपके लिए.

0: Yeah, and for everyone listening to us and connecting with the best of music right here. And also Sunday blessing coming up from Prakash Veti from Belgium. वैसे आपके यहाँ तो बहुत ही ठंड है, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे वेरी कॉशियस, लेकिन अच्छे अच्छे गानों को सुनने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अगला गाना आपके लिए और अब्रॉड से जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं सबका वेलकम इन बॉली ब्रंच ऑन रेडियो मस्ती।
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

Yes, we stay cool, we stay happy and fun-loving with Radio Masti, having a great weekend. So, यहाँ पे शुरुआत तो अभी हुई है, अभी पूरा दिन बाकी है. Have a blast with Radio Masti. इसी के साथ our wave goodbye. Thank you very much. इतना सारा प्यार आपने हमको पहुँचाया है for आज का Bollywood Brunch. हमारे बाद आ रही है पूनम लेकर the next show. Stay well connected with Radio Masti. I wish you all a pleasant weekend.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix. Welcome to RM2.
0: Radio Musty.
2: Radio Musty.
0: North, South.
2: 103.5.
0: East, West.
2: 96.4.
0: Center.
2: 99.4.
1: RM2.
2: Radio Musty.
1: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musty.
1: Feel the Musty.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। मॉरिशस में अनुसंधान और नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए ये एक नए युग की शुरुआत है। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल को पारित कर दिया गया है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को केंद्रित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान मंत्री कविराज सुको के अनुसार इस सुधार का उद्देश्य है मॉरिशस को एक अत्यधिक रणनीतिक निकाय प्रदान करना, जो राष्ट्रीय चुनौतियों के ठोस समाधान खोजने के लिए शोधकर्ताओं को एक साथ लाने में सक्षम हो। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस यानी कि सेट MU जागरूकता अभियानों को तेजी से बढ़ा रहा है और जनता से अधिक सावधान रहने की अपील कर रहा है। फिशिंग वेबसाइट यानी कि एक फर्जी या फिर नकली वेबसाइट होती है, जिसे हूबहू किसी जानी मानी और भरोसेमंद कंपनी की तरह दिखने के लिए बनाया जाता है। सचिंद्र रिचाई ने बताया कि सेट MU इन घोटालों में इस्तेमाल होने वाली फिशिंग वेबसाइट्स और धोखाधड़ी वाले ईमेल को डीएक्टिवेट करने के लिए इंटरनेट सेवा यूजर्स और विदेशी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिन मामलों में वित्तीय नुकसान होता है उन्हें जांच के लिए पुलिस के पास भेज दिया जाता है। ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य उद्योग मंत्रालय को इस पर पूरा भरोसा है और मछुआरों को लगूनों से आगे बढ़कर गहरे समुद्र में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए मंत्रालय ठोस कदम उठा रहा है।

0: फिलिप में बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पिछले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके नाव की आउटबोर्ड मोटर मरम्मत के लायक नहीं रह गई। इस मदद को लाभार्थियों ने एक बड़ी राहत के रूप में लिया है और इसका सकारात्मक रूप से स्वागत किया गया है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने शनिवार को कहा कि अब तक 78 कमर्शियल जहाज़ों के रास्ते से वापस लौटाया गया है, जबकि 4 जहाज़ों को डिजेबल कर दिया गया है ताकि वे ईरानी बंदरगाहों तक न पहुँच सके। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। पेचित्रिविया में 92 साल की 92 years old की श्रीमती सावित्री बिसुनत पैदाशी नाम मगाता और जिन्हें सब लोग शांति के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे पेचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वाले दुप्रैत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2:30। रॉयल रोड फूंजी सक में 44 साल के 44 years old के श्री शैलेश कुमार शिवरक जिन्हें सब लोग शैलेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड फूंजीसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फूंजीसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Jolly Brunch RM2 Radio Masti.
1: हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? क्या बात है, मॉर्निंग के बज गए भाई 11:08, 17 मई का दिन, प्यारा सा और संडे यस। मुझसे पहले आपका साथ दे रही थी आरजे हंसनी और अब आ गई हूँ मैं यानी कि पूनम। तो अगले 3 घंटे हो गया, सिर्फ मूड रहेगा, म्यूजिकल सॉन्ग्स रहेंगे सुपर हिट और जहाँ पर भी हैं बस इन्जॉय कीजिए आपका ये ब्यूटीफुल मोमेंट, क्योंकि अब ये चलने वाला है बॉय फ्रेंच का 1 घंटा जो मुझे मिला है, 2 घंटे पहले आरजनी हंसनी कर चुकी हैं तो अब बस करते हैं। उसके बाद शुरू होगा लव लाउंज यानी कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जहां पर बातें होंगी सिर्फ प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए आरएम2 रेडियो मिस्टी के साथ, और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124। तब तक एंजॉय करते हैं ये गाना
0: बॉडी ब्रांच आरएम2 रेडियो मस्ती।
2: RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:18 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आपके ही फेवरेट प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। और बॉली ब्रंच वही होता है ना भैया, बॉलीवुड भी हो और साथ में लंच का टाइम भी हो जाए, तो दोनों मिक्स को मिक्स कर दो तो बॉली ब्रंच बन जाता है। तो मुझे पता है आप लोग कुछ बना रहे होगे, खा रहे होगे, इंजॉय कीजिए, बट साथ साथ ये गाने भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि उसके साथ साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है किसी को याद करना, किसी को मिस करना। अगर आपका भी कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा ज़िंदगी में कोई दोस्त है या कोई बहुत पुराना दोस्त है, उसको मैसेज कर लीजिए, उसको पूछ लीजिए क्या हाल चाल है भाई, कोई पार्टी हार्टी तैयार करें, कि या तो आज का कर सकते हो या नेक्स्ट वीकेंड का, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो चलिए, जैसे आप मुझे याद करते हैं मैसेजेस के थ्रू या कॉल्स के थ्रू, तो आपके मैसेजेस भी हम पढ़ लेते हैं। लंदन से जुड़े हुए हैं राजन रघुपत जी, थैंक यू सो मच सर। आपका गुड मॉर्निंग कहना ही मोर देन इनफ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मैसेज पढ़ना हमेशा, जब आपका इतना छोटा सा ब्यूटीफुल मैसेज आता है, थैंक यू सो मच। उसके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललित जी USA से, और वो भी कह रहे हैं आज उनकी भांजी की वेडिंग एनिवर्सरी है और नाना नानी और उनकी वाइफ और वो यानी कि मामा जी वो उनको विश कर रहे हैं और बस यही कह रहे हैं कि जिस तरह तुम हमेशा बताते हो कि तुम्हारे हस्बैंड कितने अच्छे हैं और तुम्हारा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, बस ऐसे ही रहना, तुम भी खुश रहना, ज़िंदगी बहुत प्यारी है और क्यूट सी है, तो इसको बस इन्जॉय करो, क्या बात है। साथ में यलेश जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, बिल्कुल हम चलाएंगे, आपके गाने हम ना चलाएं ऐसा हो नहीं सकता यलेश, चलो इन्जॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:34 हो चुके हैं दोस्तों, और कहते हैं ना कि कुछ सॉन्ग जो होते हैं ना सिर्फ सुनाई नहीं देते, फील भी होते हैं, और शायद इसीलिए म्यूज़िक कभी पुराना नहीं होता। कभी आप हमें कोई मैसेज भेजते हैं और बताते हैं कि हमें ये गाना सुनना है, तो हमें वो कभी भी पुराना नहीं लगता, चाहे वो 50s का हो, 60s का हो, 70s का हो, 80s, 90s, 2000 का, और चाहे कितने भी टाइम निकल जाएगा, ये कोई भी गाने पुराने नहीं होंगे, बट हमें सिर्फ फील होना चाहिए उस गानों के साथ में, टाइम होना चाहिए, यादें होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, तो बस अपनी यादें बनाते रहें गानों के साथ। तो देखिएगा जब आपकी एक उम्र हो जाएगी तो वो गाने आपको फिर से जवान बना देंगे, और ऐसे गाने बहुत सारे होते हैं जब आपने कहीं स्पेशल टाइम पे कुछ गाना सुना होता है और इंस्टेंटली आप उसी टाइम में पहुंच जाते हैं। तो यही खूबी होती है गानों की और स्पेशली रेडियो की, क्योंकि रेडियो हमेशा आप साथ में काम करते रहते हैं और साथ साथ रेडियो सुनते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, साथ में घर के सारे काम होते हैं, उसी के साथ में आप जैसे मैसेजेस लिखते हैं तो मैसेजेस का भी रिप्लाई हम देते हैं। भाई कुमार देवी चरण जी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं फुल गिटार के साथ मैं ये प्रोग्राम सुन रहा हूं और इंजॉय कर रहा हूं, और स्पेशली मेरे डैडी को बस इतना कहना चाहता हूँ, आई लव यू पापा, आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ। सो नाइस और ब्यूटीफुल मैसेज। देखिए भाई, बेटा और पापा का ये ऐसा लव बॉन्डिंग और जो प्यार होता है ना, अनदर ही लेवल का होता है और एक्सेप्शनल होता है, तो इन्जॉय कीजिए इस लव को जब तक इस ज़िंदगी में है। तो देव दोस्त जी हमारे से जुड़े हैं अपनी वाइफ सुनीता जी के साथ में, देव, रेखा, संजीव, निशा, रानी, मीना, ऋषि और सभी परिवार के सदस्य और फैमिली फ्रेंड्स इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। और वो सभी लोग जो इस प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं, भले आप मैसेज करें या ना करें, कॉल करें ना करें, बट इंजॉय जरूर करें, तो ये कि ना गाना आप सभी के लिए, सच में आपको मजा आएगा, डांस भी कर सकते हैं।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: 11:45 हो चुके हैं दोस्तों। 17 मई का प्यारा सा दिन, और इस टाइम जो है ना, बस दिल करता है कि कोई खाने को दे दे और बस बोले कि सो जाओ, पर हमने सुलाना नहीं, आपको उठाना है। हाँ, लव लाउंज में जब बातें होंगी तब आप अपनी उन यादों में ज़रूर जुड़िएगा, पर अभी पूरे एक्टिव हो जाओ क्योंकि ये टाइम फिर से दोबारा नहीं आने वाला भाई। बहुत मस्त टाइम होता है संडे को बिल्कुल यूज़फुल यूज़ करने के लिए। एक हमारे पास किसी ने मैसेज किया है कि बस कुछ बता दो कि कॉपर बॉटल को कैसे यूज़ करते हैं, आई एम फेड अप क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कॉपर बॉटल को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए भैया, एक टिप देते हैं आपको कि कॉपर बॉटल जो है ना, वो पानी उसके अंदर जब डालते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत हैं, बट क्या होता है, लोग लगातार उसमें पानी डालते रहते हैं और उसको रेगुलरली पूरे दिन यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, रात को उसमें पानी भर देना है, 8 घंटे के बाद जब वो पड़ा रहेगा उसके अंदर पानी, तो सुबह खाली पेट वो पानी यूज़ करना है। और फिर जब बस वो 8 घंटे वाला पानी आपने पी लिया, बस वो ही आपके बेनिफिट्स है, वो 8 आवर्स के अंदर जो उसमें पानी पड़ा रहा है उसका ही बेनिफिट्स है। और फिर आपको उसको क्या करना है, उसको अच्छे से मिट्टी से, मतलब बाहर जो भी नॉर्मल मिट्टी होती है या नॉर्मल आपका सोप होता है, उसके बाद उसको यूज़ करो, उसको क्लीन करो। और हर हफ्ते उसके अंदर, मतलब क्या करना है आपको, थोड़ा सा इमली से या नींबू से उसे क्लीन करना है, क्योंकि उसके अंदर जो फंगस होती है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसको नीट एंड क्लीन को, और उसको जो है थोड़ा धूप लगने दो। वो जो आपने रात को 8 घंटे पानी रखा है वो ही इम्पॉर्टेंट है, पूरे दिन उसमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्लास बॉटल में पी लीजिए, नॉर्मल जैसे भी आप पानी पीते हैं वैसे दूसरी बॉटल्स में पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप और ऐसे हमेशा बहुत टाइट टाइट सी बॉटल मत खरीदिए, वो जिसमें आपका पूरा हाथ जा सके, ऐसा कोई फ्लास्क ले लीजिए या जग ले लीजिए जिसके अंदर आप उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा हाथ जाए,

0: जब वो आप देखेंगे कि वो जो पानी है ना वो इतना बेनिफिट देता है कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बुजुर्ग लोगों के लिए अच्छा है, यंगस्टर्स के लिए अच्छा है, बट बस सिर्फ 8 घंटे वाला पानी, उसके बाद आप नॉर्मल पानी पीजिए और उसको धूप लगने दीजिए। तो ये है कॉपर बॉटल को पानी यूज करने का तरीका।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: हाय वॉली ब्रंच से करती हूँ मैं बाय बाय, लेकिन यही हूँ अगले दो घंटे लव लाउंज में आपके साथ, तो कहीं मत जाइएगा। मुझको ऐसे म्यूजिकल रखे, मैं थी आपके साथ पूनम, और आगे भी दो घंटे आपके साथ बनी हूँ लव लाउंज में। तब तक इंजॉय कीजिए, इसके बाद आप सुन पाएंगे संक्षिप समाचार।
3: मगर फिर भी न जाने क्यों

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
7: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। मॉरिशस में सांस से जुड़ी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 4 से 10 मई के बीच इसके 3,400 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि इससे पिछले हफ्ते ये संख्या करीब 3,000 थी। आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने और कई तरह के मौसमी वायरस फैलने के कारण ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कोंगो में फैली इबोला की नई बीमारी को देखते हुए दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया। ये बीमारी इबोला के एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक रूप बूंदी बुग्यू के कारण फैली है। फिलहाल इस नए रूप से बचने के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त टीका मौजूद नहीं है। कोंगो के इतुरी इलाके में अब तक कई संदिग्ध मौतें भी हो चुकी हैं। इस खतरे को देखते हुए मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बंदरगाह और हवाई अड्डे पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कोंगो से आने वाले सभी यात्रियों पर 21 दिनों तक खास नजर रखी जाएगी। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल यानी कि नैडेक मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी। ये स्पष्टीकरण शुक्रवार सुबह इसके सीईओ कुनाल नायक ने हमारे सहयोगी सांताना पोसिनो के साथ मॉर्निंग इंटरव्यू में दिया। उनके अनुसार नैडेक की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना, डाटा का विश्लेषण करना, विभिन्न संबंधित निकायों के साथ मिलकर काम करना है और सिफारिशें भी तैयार करना है। विशेष रूप से नेशनल ड्रग मास्टर प्लान और गांजे सहित ड्रग्स से जुड़ी नीतियों पर चल रहे विचार विमर्श के ढांचे के ऊपर। लेकिन कुणाल नायक ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों, सरकार और संसद का होगा। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि इटली के मोदिना शहर में शनिवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार चालक ने जानबूझकर अपनी गाड़ी फुटपाथ पर चल रहे राहगीरों पर चढ़ा दी। इस दर्दनाक घटना में कम से कम 7 लोगों

0: लोग घायल हो गए जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से बाहर निकला और हाथ में चाकू लेकर भागने की कोशिश करने लगी, परंतु जिसके मौके पर मौजूद बहादुर नागरिकों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में सुख समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनते हैं। मोसेलमेंट ले पाल्मिएर ट्रॉ बुटीक में 60 साल की 60 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सरस्वती सुंदर पैदाइशी नाम गुनावा और जिन्हें सब लोग बहन जी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री सुरेश सुंदर के घर मोसेलमेंट ले पाल्मिएर ट्रॉबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM नंबर 34 लातू के निक पोटली में 74 साल के 76 years old के श्री इसुप दहारी जिन्हें सब लोग इसुप के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी वंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज सपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान नंबर 34 लातू के निका पोतवी से निकालकर दफनाने के लिए सैमोंटे का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Love Lounge.
2: RM2.
3: Radio Musty.
1: Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 12:11 हो चुके दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? इतवार की प्यारी सी दोपहर, कोई आराम कर रहा है, कोई बाहर है और कोई चुपचाप किसी को याद कर रहा है। तो चलिए, 2 घंटे हैं हमारे पास ऐसे सॉन्ग चलाने के लिए और ऐसे गाने चलाने के लिए जिसे आप सुनना बहुत पसंद करते हैं। और इस समय आप सुन रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती, यानी कि मॉरिशस का ये एक प्यारा सा रेडियो। बहुत सारे लोग बाहर देशों से जुड़े होते हैं और अपने दिल की बात कहीं ना कहीं हमें बताते हैं और कहते हैं कि क्या ये मैसेज आप हमारे इस किसी अपने को दे सकते हैं। तो बिल्कुल, हम एक कबूतर के जैसे हैं आपके लिए, बस आपका मैसेज वहां तक पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5499-1294 पर। और मैं हूं आपके साथ पूनम।
2: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 12:23 हो चुके हैं दोस्तों, और जो लोग प्यार में हैं उनके लिए थोड़ी सी दुनिया बहुत खूबसूरत तब लगती है जब ऐसे गाने चलते हैं, और जब ऐसे गाने चलने लगते हैं तो दिल अपने आप कहीं खो जाता है। और इस समय यूएसए से जुड़े हुए हैं हमारे साथ ललित जी, वहाँ तो रात का माहौल है और हम यहाँ दिन में उनकी फरमाइश को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ही मैसेज करते हैं और हमेशा कहते हैं कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं और जो भी अपनी वाइफ से या हस्बैंड से प्यार करते हैं उनके लिए गाना बहुत खूबसूरत रहेगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये गाना, और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेश, आयना, पादू फैमिली रोशनवा से, और कह रहे हैं लवली वेदर और लवली सिलेक्शन। थैंक यू सो मच आप सबका जो भी आप जुड़ रहे हुए हैं। और साथ में अगर किसी को भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर, हम एक एक करके आप सबकी फरमाइश पूरी करेंगे।
0: Love Lounge, RM2 Radio Musti, Love Lounge।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: हंस

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 12:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी कि पूनम के साथ अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज में। तो भाई क्या होता है ना, दोस्त सिर्फ हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही नहीं होते, प्यार तो दोस्तों और यारों में भी होता है और

0: लिहाज सबकी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत होता है कि लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ चाहिए नहीं। और सच कहूँ तो ये बड़े ही अनमोल होते हैं, ये दोस्त जो होते हैं ना हर सुख दुख में अचानक से सामने आ जाते हैं और हमारी आधी टेंशन को ऐसे ही हंसी मजाक में उड़ा देते हैं और कहते हैं अरे हम है ना काहे कुछ चिंता करने की। तो यही होते हैं दोस्त, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे दोस्त। इस समय हैप्पी बर्थडे बोल रही हैं हमारे लिए ललिता जीतन जी पिंकी को और बेस्ट विशेस दे रहे हैं ऑल कलीग्स एंड टीचर्स सिमी लीना आश्ले सिनिकार रवि निष्ठा मीमी सोनिया दिशिता ललिता जीतन जी की तरफ से। और उनको बस यही कह रही हैं कि हमारे साथ रहो और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कट जाएगी ज़िंदगी बहुत ही प्यारे तरीके से। सो नाइस, यही होता है और हम भी आपको यही कहेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे पिंकी जी, इन्जॉय कीजिएगा आज पूरा दिन आपके नाम। सरोजा जी जुड़ी हुई हैं, आज उनका भी बर्थडे है और उनके भी दोस्त सारे जो कि SPK में काम करते हैं उनको विश कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि तुम हो साथ में तो हमें टेंशन नहीं होती क्योंकि सारे दोस्त यार हंसते खेलते मुस्कुरा आते हुए ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। तो साथ में संजना जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी अपने प्यारे परिवार के लिए और बहुत ही स्पेशल फ्रेंड के लिए एक गाना सुनना चाहती हैं, तो हम उनके लिए भी एक गाना चलाने वाले हैं। तो बस आप अपने मैसेजेस ऐसे ही भेजते रहिए, तब तक इंजॉय कीजिए आपका ये गाना।
1: Love Lounge. RM2. Radio Musti. Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 12:47 हो चुके हैं दोस्तों, और जो लोग इस समय किसी को याद करके मुस्कुरा रहे हैं, उम्मीद है आपकी वो स्माइल हमेशा ऐसी बनी रहे और आप अपने जिसको याद कर रहे हैं वो हमेशा आपके करीब।

0: दीप आपके पास रहे। तो चलिए भाई दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं प्यारे प्यारे से। इस मैसेज का, ऐसे मैसेजेस का कह सकते हैं मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो एक मैसेज है हबी प्रवेश के लिए और उनकी वाइफ यानी कि भावना कह रही हैं कि अरे आप अभी काम तो कर रहे हो पर आपको मैं बहुत मिस कर रही हूँ और हमारी बेटी कियाना भी आपको बहुत मिस कर रही है। बस बताओ शाम को खाने में स्पेशल क्या बनाऊँ आपके लिए। क्या बात है भाई, ऐसे भी मोहब्बत होनी चाहिए और पूछना चाहिए हमारे थ्रू कि भाई क्या शाम को बनेगा। तो चलिए भाई ये भी प्यार प्यार है, मोहब्बत है। तो बस आपको जो भी मैसेज है अपनी वाइफ को बताइए कि आपको क्या खाना है वो बनाने जा रही हैं आपके लिए। तो चलिए इसके साथ में ही एक और प्यारा सा मैसेज है वाई की तरफ से। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा बट कहा मैं वाई हूँ और मुझे एक प्यारा सा गाना सुनना है। तो जो नेक्स्ट गाना चलेगा वो वाई की ही फरमाइश का है। रागनी जी साथ में जुड़ी हुई हैं अपनी डॉटर स्वीटी, अपने दामाद कमलेश, शेषना, योहान, रोहान के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। आरती जी भी साथ में जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं मेरा एक दोस्त है जो कि आउट ऑफ मॉरिशस रहता है बट उसको मैं बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। तो क्या आप उनके लिए एक प्यारा सा गाना चला सकते हैं? बिल्कुल जी, हम क्यों नहीं चलाएंगे। बस हम यही कहेंगे जिनको भी आप याद कर रहे हैं उनको याद करके दुआएं भेजिए और प्यार भेजिए। देख लीजिए वो जल्दी वापस आपके पास आएंगे। और उसके साथ में नुतिशा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अश्विन हर्षी, निवंशी, दिगंबर फैमिली, मामा मोहिनी, ब्रो गिरीश, गणेश एंड फैमिली सिस्टर, सुरेखा, विक्की, निखिल, तिशा यानी सोहन, रंजिया भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इन्जॉय कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक्स। और आपको भी हम यही बस बोलेंगे अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप भेज सकते हैं 5491294 पर। तब तक इन्जॉय कीजिए ये आपका प्यारा सा गाना वाई के नाम।
1: लव लाउंज RM2 रेडियो मस्ती लव लाउंज।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस में सांस से जुड़ी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 4 मई से 10 मई के बीच इसके 3,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पिछले हफ्ते ये संख्या करीब 3,000 थी। आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने और कई तरह के मौसमी वायरस फैलने के कारण ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। अगर किसी को पहले फ्लू या सर्दी जुकाम हो चुका है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दोबारा ये बीमारी नहीं हो सकती। डॉक्टरों विशेषज्ञों ने इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी और सेहतमंद जीवन शैली यानी साफ सफाई और सही खान पान अपनाने की सलाह दी है। ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य उद्योग मंत्रालय को इस पर पूरा भरोसा है और मछुआरों को लगूनों से आगे बढ़कर गहरे समुद्र में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए मंत्रालय ठोस कदम भी उठा रहा है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे पिछले शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके की आउटबोर्ड मोटो मरम्मत के लायक नहीं रह गई है। इस मदद को लाभार्थियों ने एक बड़ी राहत के रूप में लिया है और इसका सकारात्मक स्वागत किया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कोंगो में फैली इबोला की नई बीमारी को देखते हुए दुनिया भर के लिए दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया है। ये बीमारी इबोला के एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक रूप बंडी बग्यो के कारण फैली है। फिलहाल इस नए रूप से बचने के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त टीका मौजूद नहीं है। कोंगो के इतुरी इलाके में अब तक कई संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। इस खतरे को देखते हुए मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बंदरगाह और हवाई अड्डे पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कोंगो से आने वाले सभी यात्रियों पर 21 दिनों तक खास नजर रखी जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयरलैंड के मशहूर MMA कोनो मैक

0: वापसी करने जा रही है। यूएफसी ने शनिवार को ऐलान किया कि 11 जुलाई को लास वेगास में उनका मुकाबला अमेरिका के मैक्स हॉलोवे से होगा। ये इन दोनों के बीच एक दोबारा मुकाबला होगा। आपको बता दें कि मैकग्रेगो जुलाई 2021 के बाद से पहली बार रिंग में उतरेंगे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहिए, सुनते हैं शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 34 लातूकेनिक पोर्ट लुइस में, नंबर 34 लातूकेनिक पोर्ट लुइस में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के जनाब इसुप दहारी, जिन्हें इसुप के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनके मकान लातूकेनिक पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Love Lounge
2: RM2
3: Radio Musty
1: Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 1:07 हो चुके हैं दोस्तों। कभी नोटिस किया है, जिस इंसान से प्यार होता है ना, उसकी आवाज़ भी मूड अच्छा कर देती है। और कुछ लोग इस वक्त किसी मैसेज का वेट कर रहे होंगे और कुछ लोग बस अगले वीक के लिए थोड़ी सी हैप्पीनेस और थोड़ी सी ताकत चाह रहे होंगे कि कितना और डिफ़िकल्ट हुआ ये लास्ट वीक, बहुत काम किया, बस थोड़ी सी ताकत मिल जाए संडे के बाद, एक प्यारा सा पूरा वीक काम करने का मौका मिल जाए। तो बस यही है हम इन गानों के साथ, और थोड़ी सी स्माइल देते हैं आपको, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी रखिए अपने साथ में, बस उसके बाद आपको जो गाना आने वाला है ना, ये आपको ताकत देगा अगला हफ्ता चलाने के लिए। तो एंजॉय कीजिए आपके ये गाने।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: ये सॉन्ग चलेगा कमलेश जी का थबोन से और उनके प्यार की और मोहब्बत के लिए।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 1:20 हो चुके हैं और कुछ लोग हमारी लाइफ में ना बहुत लेट आते हैं, पर आते बिल्कुल सही टाइम पे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स भी आ रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि प्यारा सही मैसेज हमारा प्लीज़ पढ़ दो हमारे किसी अपने के लिए। तो बस हम भी बैठे होते हैं आपके इंतज़ार में कि कब आप ये मैसेज करेंगे और हम पढ़ेंगे। तो साधना जी हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम पर, जिया गौरव तेजल क्रियान और तस्विक के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और उन्हें बस इतना कहना चाहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे आसपास रहा करो, तुम मेरी तरह एक ऐसी, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक खुशबू के जैसे हो, जब तुम मेरे पास आते हो तो मेरी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है। सो स्वीट, यही होता है सभी के साथ जब ग्रैंड चिल्ड्रन पास होते हैं, चाहे बड़े अपने बच्चे कई बार दुख दे जाते हैं, पर जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ये बहुत प्यार देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं। तो उसके साथ में ही चाचा महीन जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सभी लिसनर्स को बस इतना कहना चाहते हैं हैप्पी संडे, और स्पेशली अपने पुराने दोस्तों को, और वो कहते हैं आपसे हमने सीख लिया है कि भाई दोस्तों को कभी कभी याद कर लिया कीजिए। तो चलिए भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैसेज कीजिए उनको। सुनीता जी जुड़ी हुई हैं और नोतिशिता दामाद, अश्विन, हर्षी, निवांची, दिगंबर फैमिली, मामा मोहिनी एंड ब्रदर गिरीश, गणेशन फैमिली, सिस्टर सुरेखा, विकी, निखिल, तिशा, यानिश, सोहन, रांझिया के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आप करते रहिए मैसेजेस, हम बिल्कुल आपके पसंद के गाने चलाते रहेंगे इस प्रोग्राम लव लाउंज में। ये सिर्फ मोहब्बत और इससे जुड़ा हुआ है और ये सबसे होता है, किसी से भी हो सकता है। तो बस आप अपना मैसेज कीजिए और अपना गाना सुनिए।
0: लव लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती, लव लाउंज।

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 1:34 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम लव लाउंज। लव लाउंज में बात होती है सिर्फ प्यार और मोहब्बत की, और वो किसी के लिए भी होती है, किसी के लिए भी वो ऐसी फीलिंग्स जो दबी होती है और कभी ना कभी निकालनी ही होती है, और कहना होता है कि हाँ भाई तुमसे हम कितना मोहब्बत करते हैं। और कई लोग आज इस टाइम फैमिली के साथ लंच कर रहे होंगे, इसी साइड पर होंगे, और कई लोग इस टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे और उस खास इंसान के साथ कहीं पर गए होंगे और कहा होगा कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर हम कई मैसेजेस तो इसलिए नहीं बोल पाते कि हमें वो खुद ही बोल देते हैं कि प्लीज़ ये बोलिएगा नहीं, बट ये सिर्फ मैसेज पढ़ दीजिएगा। पर ये एक मैसेज ऐसा है कि वो हमेशा कहते हैं कि उनका नाम ज़रूर लीजिएगा। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिद्वाग विदेशी जी, और बस अपनी अनुषा खेदों जी को कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं प्यार करता हूँ कि तुमने मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाया, मैं शैतान था, मुझे तुमने बहुत अच्छा इंसान बना दिया। और कहते हैं कि जैसे तुमने मुझे बनाया है ना, हमेशा ऐसे ही खूबसूरत और अच्छी इंसान बन के रहना और मेरे साथ चलना, मेरी किसी भी गलती कोई भी कर दूँ मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। और आप सबका जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप एक दूसरे के मैसेजेस पढ़ने या सुनने के बाद एहसास होता है कि इंसान कितना प्यार करता है। चलिए भैया एक और प्यारा सा मैसेज आया है। आज एक प्यारे से प्रिंसेस मतलब प्रिंस का बर्थडे है, जो उनका 12th बर्थडे है, नीलकांत रमन्ना जी का, जो कि रेनियन आइलैंड में रहते हैं, डैरन श्वेता रविश प्रीशा लोवेशा और होल अपादू फैमिली उनको विश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हे बच्चा एंजॉय करना अपना बर्थडे। और बस यही कह रहे हैं हम पूरी एमबीसी टीम आपके लिए,

0: from Radio Musti.
1: Love Lounge.
2: RM2.
3: Radio Musti.
1: Love Lounge.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: दोस्तों 1:47 हो चुके हैं और कहते हैं प्यार में सबसे खूबसूरत चीज पता क्या है, किसी अपने का इंतज़ार करना, किसी के मैसेज का इंतज़ार करना, किसी के कॉल का इंतज़ार करना और बस उसके लिए सिर्फ इंतज़ार करना। और ये सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है कि आपकी ज़िंदगी में सच में कोई ऐसा है जिसका आप इंतज़ार कर सकें। तो बस अगर कोई है तो इंतज़ार करते रहिए, पर हम इंतज़ार नहीं होने देंगे और किसी ऐसे मैसेज का कि भाई कौन क्या कहना चाहता है किसी के लिए। तो हमारे साथ पूनम बिसेसर जी जुड़ी हुई हैं और वो अपनी मामा को सिर्फ इतना कहना चाहती है, आपके प्यार ने हमें संवारा है और आपकी इस एज में मैं आपके साथ हूँ, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। और ये इस तरीके से जब मैसेज आता है ना तो दिल को खुशी मिलती है कि बेटी हो या बेटा हो, हर कोई एक दूसरे के लिए साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आपके मम्मी पापा हैं आपके साथ तो बस उनका साथ दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको जितना मुस्कुराहट दे सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं।

0: ये भी एक प्यार का हिस्सा ही है। तो बस उनके साथ रहिए, साथ में विहान, शीतल, प्रिया, अंश, कृषि, कृषिका, पुनीता, हसमुख एंड राधा फैमिली, पटेल फैमिली, रितिका भी साथ जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लव लाउंज प्रोग्राम को। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए, आपका ये गाना आपकी ममा के नाम।
1: Love Lounge. RM2. Radio Musti. Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 1:55 हो चुके हैं दोस्तों, लव लाउंज में ये प्यार भरी दोपहर अब यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है इन रोमांटिक सॉन्ग्स और बातों ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे आरम टू रेडियो मस्ती पर। तब तक खुश रहिए, बस प्यार बांटते रहिए। मेरे बाद आ रही हैं परी और ये लास्ट सॉन्ग जो चलेगा सुरजनी जी के लिए, जो कि कथबोन से हैं और उन्होंने बहुत लास्ट में कॉल किया और बस ये कहा कि उनका लिए एक प्यारा सा गाना चलाइए। तो जो भी मैसेजेस नहीं कर पाए या कॉल नहीं कर पाए पर फिर भी हमें सुन रहे हैं, तो हम उनके लिए सबके लिए यही कहेंगे थैंक यू सो मच, इन्जॉय कीजिए ये लास्ट सॉन्ग, बस खुश रहिएगा, बाय बाय।
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hit music only.
3: Feels a Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Time check 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. कोंगो में इबोला वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस रविवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे ऊंचा स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है. चिंता की वजह एक दुर्लभ और बेहद घातक वेरिएंट है जिसके लिए फिलहाल कोई मान्यता प्राप्त वैक्सीन मौजूद नहीं है. कई संदिग्ध मौतों की भी जानकारी सामने आई है. इधर मॉरिशस में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी के कदम तेज कर दिए हैं. बंदरगाह और हवाई अड्डे पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है. कोंगो से आने वाले यात्रियों को 21 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी में रखा जाएगा. मॉरिशस में फ्लू और अन्य स्वास्थ्य सांस संबंधी इन्फेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. 4 से 10 मई के बीच 3,400 से ज्यादा मामले दर्ज, जबकि उससे पिछले हफ्ते करीब 3,000 मामले सामने आए थे. डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरसों के फैलाव के कारण आने वाले दिनों में संक्रमण और बढ़ सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि पहले फ्लू हो चुका होना दोबारा संक्रमण से पूरी सुरक्षा नहीं देता. विशेषज्ञ अच्छी जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, संतुलित भोजन लेने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दे रही है. मॉरिशस में ऑनलाइन स्कैम और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मॉरिशस ने जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी है. साल की शुरुआत से अब तक ऑनलाइन फ्रॉड के 242 मामले दर्ज, इनमें से 217 आइडेंटिटी थेफ्ट और 15 फिशिंग के मामले शामिल हैं. दूर समुद्र में मछली पकड़ना अब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. मत्स्य मंत्रालय चाहता है कि स्थानीय मछुआरे लगून से आगे बढ़कर डीप सी फिशिंग की ओर कदम उठाएं. इसी दिशा में सरकार ने कई सहायता योजना शुरू की है. बैंक ऑफ मॉरिशस डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस ने भी उसके साथ मिलकर हुए समझौते के तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी जिनके आउटबोर्ड इंजिन्स अब मरम्मत योग्य नहीं है. विदेश के खबरों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा में व्यापार निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है. नेदरलैंड्स में उन्होंने एक बड़े डैम का दौरा किया जहां पानी के प्रबंधन और बाढ़ से बचाव के तरीकों पर चर्चा हुई. स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात वहां के नेताओं और बड़े उद्योगपतियों से होगी. बातचीत में मेक इन इंडिया, नई टेक्निक और उद्योग से जुड़े मुद्दे शामिल रहेंगे. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. लातू के निक पोटली में 76 साल के 76 के जनाब इसुप दहारी इंतकाल कर गए हैं. उनका जनाजा आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान लातू के निक पोटली से निकालकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Plug and play.
5: RM2.
3: Radio Musty.
8: Plug and play.

0: सुबह हम भी आ गए हैं यहाँ पर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ। इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले। मैं हूँ परी आपके साथ। 2:10 हो रहे हैं संडे आफ्टरनून, सो इट्स टाइम टू रिलैक्स, इट्स टाइम टू चिलैक्स। गुड म्यूजिक के साथ आपकी आफ्टरनून को बनाएंगे म्यूजिकल मैजिकल। साथ दे रहे हैं आप भी। नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499-1294 पर।
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
1: Plug and play.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: So well friends, it's time to plug and play, जहां पर हम लेकर आए हैं कुछ beautiful songs. हम यानी हमारी पूरी रेडियो मस्ती की टीम कनेक्टेड है आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड मैं हूं परी आपके साथ till 4 PM. कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बिकॉज संडे का ही तो दिन होता है जब आप आराम से लेटे लेटे या फिर आराम से बैठे बैठे गानों को एंजॉय कर सकते हैं, वरना तो हफ्ते भर काम की भाग दौड़ में वक्त कहाँ भागा चला जाता है किसको पता चलता है. सो आज का ये जो दिन मिला है, डू मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड मेक दिस संडे काउंट. अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त जरूर निकाले, थोड़ा सा मी टाइम जहाँ पर आप खुद को पैम्पर कर सके. और अभी के लिए तो गाने ऐसे लेकर आए हैं जिन्हें सुनते सुनते आपका ये जो संडे है वो बिल्कुल फन डे बनने वाला. So well, अभी के लिए it's time to read out आपके messages, आपके dedications. पूजा यहाँ पर साथ दे रही हैं और कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा कि प्यार सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता, हमारे मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर्स नेबर्स एंड पीपल अराउंड अस सभी के साथ तो हम प्यार भरा रिश्ता जरूर शेयर करते हैं. So well, अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चलाएंगे पूजा, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल थॉट. और कहते हैं कि यादें जो हैं वो परिवार के साथ हमेशा दिल में समा लेते हैं हम, तो यादों को बनाना जरूरी होता है. सरोज राजन, मोनिका, पूनम, श्रेया एंड कुमेर साथ में है, अर्शी अम्बल, और गाना हम डेडिकेट करेंगे उनके नाम फॉर द फुल फैमिली. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल संडे. भगवत विदेशी जी तायाक से कहते हैं एक रोमांटिक गाना हो जाए फॉर अनुषा खेदन, मोतबा से साथ दे रही हैं. बिल्कुल जी, वी ऑल्सो हैव रितेश, श्यामा, रानी, तनिष, आदर्श, राधा, यशना है साथ में है, निष्ठा, जयश्री, वशिष, यूश्रा एंड ऑल जीवन फैमिली ऑफ बेले. और कहते हैं डेडिकेशन हम

0: करना चाहेंगे पूरे एंटायर क्रू रेडियो मस्ती के नाम. एंड फॉर मी थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट. चलिए सो ऐसे ही आप अपने स्वीट डेडिकेशन हम तक पहुंचाती रहिए और कोशिश रहेगी गानों के साथ हम आपके दिल को बहलाते रहेंगे. अपारू परिवार हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं दैट डोमिनोज खेलते हुए वी आर एंजॉइंग द सॉन्ग्स राइट नाउ, सो दैट्स रियली स्वीट. पूरा कजिन क्रू इस वक्त साथ में है, सो दारिन श्वेता रवि श्रीशा लवशान अपारू परिवार खुशनुमा से साथ दे रहे हैं. एंजॉय दिस वन.
1: RM2 Radio Mastin.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर संडे आफ्टरनून में कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम मिक्स ऑफ सॉन्ग्स लेकर आए हैं, ताकि आपको हर एरा का जो म्यूजिक है आप तक पहुंचा सके। बीट द 90s, बीट द अर्ली 2000 या फिर सम लेटेस्ट ट्रैक, सब कुछ होने वाला है आपके लिए, बिकॉज ये है प्लग एंड प्ले ऑन रेडियो मस्ती। परी का साथ है टिल 4 PM एंड विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर। समाचारों के बाद कुछ और प्यारे गाने करेंगे आपका इंतजार, कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड। साथ दे रहे हैं आप, सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर। अभी के लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, फिल्म है फिदा, आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक की, एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ, दिस वन गोज़ आउट फॉर यू।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती RM2 रेडियो मस्ती।

0: Hi.
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik. Gel air freshener. Freshness. Anytime, anywhere.
2: North. South.
3: 103.5.
2: East. West.
3: 96.4.
2: Center.
3: 99.4.
4: RM2.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. कोंगो में एबोला वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ गया. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे ऊंचा स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है. चिंता की वजह एक दुर्लभ और बेहद घातक वेरियंट है जिसके लिए फिलहाल कोई मान्यता प्राप्त वैक्सीन मौजूद नहीं है. कई संदिग्ध मौतों की भी जानकारी सामने आई है. इधर मॉरिशस में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी कदम तेज कर दिए हैं. बंदरगाह और हवाई अड्डे पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है. कोंगो से आने वाली यात्रियों को 21 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी में रखा जाएगा. मॉरिशस में फ्लू और अन्य सांस संबंधी इन्फेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. 4 से 10 मई के बीच 3,400 से ज्यादा मामले दर्ज, जबकि उससे पिछले हफ्ते के दौरान करीब 3,000 मामले सामने आई थी. डॉक्टरों के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरसों के फैलाव के कारण आने वाले दिनों में संक्रमण और बढ़ सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि पहले फ्लू हो चुका होना दोबारा संक्रमण से पूरी सुरक्षा नहीं देता. विशेषज्ञ अच्छी जीवन शैली अपनाने, संतुलित भोजन लेने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दे रहे हैं. मॉरिशस में ऑनलाइन स्कैम और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस ने जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी. साल की शुरुआत से अब तक ऑनलाइन फ्रॉड के 242 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से 217 पहचान चोरी और 15 फिशिंग के मामले शामिल हैं. सर्ट एमयू के अनुसार साइबर अपराधी अब एआई का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं. दूर समुद्र में मछली पकड़ना अब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल. मत्स्य मंत्रालय चाहता है कि स्थानीय मछुआरे लगून से आगे बढ़कर डीप सी फिशिंग की ओर बढ़ें. इस दिशा में सरकार ने कई सहायता योजना शुरू की है. डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ हुए समझौते के तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी जिनकी आउटबोर्ड इंजन्स की मरम्मत योग्य नहीं है. वाकुआ की जॉन केनेडी सड़क पर पिछले फरवरी महीने से आवागमन प्रभावित नदी पर बने पुल के निर्माण कार्य के कारण सड़क की दोनों लेन बंद कर दी गई हैं. व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और कर्मचारियों का कहना है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है. लंबे रास्ते, आर्थिक नुकसान और लगातार बढ़ती परेशानी के बीच कई लोग अपनी राश नजर आ रहे हैं. भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूरोप यात्रा, उनकी यात्रा में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है. नेदरलैंड्स में उन्होंने एक बड़े डैम का दौरा किया जहां पानी के प्रबंधन और बाढ़ से बचाव के तरीकों पर चर्चा हुई. स्वीडन में श्री मोदी की मुलाकात वहां के नेताओं और बड़े उद्योगपतियों से होगी. बातचीत में मेक इन इंडिया, नई टेक्निक और उद्योग से जुड़े मुद्दे शामिल. वहीं नॉर्वे में भी निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी. यूरोपीय देशों ने भारत को विकास और कारोबार के लिए एक अहम साझेदार बताया है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. सुफ्रेन स्ट्रीट मेबर्ग में 94 साल के 94 के अब्दुल मुनाफ मामूजी इंतकाल कर गए हैं. लोग उन्हें चिबाई के नाम से अधिक जानते थे. उनका जनाजा आज शाम के 6 बजे उन्हें मकान से उठाकर दफनाने के लिए रिवियर क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 6 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
4: RM2.
2: Radio Musti.
3: Plug and play.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: सो वेल दैट वॉज जग घूमिया आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं हमारे जो लिसनर्स हैं सबसे खास एंड स्पेशल बिकॉज आप ही का प्यार हमारे इस रेडियो को इतना स्पेशल बनाता है. सभी के लिए यहाँ पर वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, कुछ गाने ऐसे जो आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करवाएंगे, कुछ गाने ऐसे जो दिल की धड़कनों को बढ़ाएंगे बिकॉज इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. मैं हूं परी आपके साथ एंड टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन. फिल्म तो आपको याद

आधी होगी, कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी एंड ऑफ कोर्स स्पेशल अपीयरेंस सलमान खान। हाउ कैन वी नॉट फॉरगेट ये जो प्यारी प्यारी लव स्टोरीज बनी थी उस टाइम, यानी कि इन्हें हम कैसे मेंशन ना करें, क्योंकि जब आपका साथ है, आपका प्यार है, तो ये सब यादें अपने आप ही ताज़ा हो जाती है। सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल संडे। 3:10 हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी लिसनर्स, हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव अ म्यूजिकल टाइम एंड ऑफ कोर्स अ मैजिकल टाइम रेडियो मस्ती के साथ। प्लग एंड प्ले, मैं हूं परी आपके साथ।

0: Plug and play.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: So well, दौर तो वही था लेट 90s या फिर अर्ली 2000. जो गाने आए वो आज भी हमारे दिल में उतने ही ताज़ा है और बस उन्हीं यादों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं. 3:14, मैं हूं परी आपके साथ. हेलो फ्रेंड्स, क्या कुछ चल रहा है? हाउ इज़ योर संडे गोइंग? आई एम श्योर एकदम मस्त आपका संडे बीत रहा है, क्योंकि संडे जब आता है तो लेकर आता है बहुत सारी खुशियाँ, इसीलिए क्योंकि मिलता है वक्त अपनों का, टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए खुद के साथ और कुछ काम जो आप ऐसे करना चाहते थे जो मंडे टू फ्राइडे तो आपको मौका नहीं मिला, बट मिला है वक्त वीकेंड का, जहां पर आप अपनी फेवरेट मूवीज देख सकते हैं, आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ले सकते हैं और अपने संडे को एंजॉय कर सकते हैं. सो वेल डू मेक दिस संडे स्पेशल एंड आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हम चला रहे हैं ऑन 5499124. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन भी आ रहे हैं. सो गाना होगा फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्वन, ज्योति एंड हरक परिवार मोंडालबे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप. सो हैव अ वंडरफुल टाइम एंड हैव अ वंडरफुल संडे. और चलिए यहाँ पर लोड्स

गुड विशेज, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू राजना सूरत. आप है खुशनवासी, लोड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस ऑलवेज फ्रॉम श्रेष्ठा. साथ में है विसागेन एंड बेबी थावसन, आपके लिए भेजा है प्यार. साथ ही डेडिकेटिंग गाना उनके नाम एंड सभी बंधन परिवार प्रजीवर जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप. सो थैंक यू जी. एंड वंस अगेन हमारी पूरी टीम की ओर से राजना आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर अब्दुल एंड सायरा बानो जो हमेशा साथ देते हैं ऑन रेडियो मस्ती. सो गुड विशेस आपके नाम भी. और चलिए यहाँ पर कहते हैं ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे गाने, गुस्ताखी माफ. बस एक गाना अगर साथिया का आप चला दीजिए, सिंघम फिल्म का, कोशिश करूंगी आपके लिए चलाने की. थैंक यू सो मच. और कहते हैं दैट यहाँ पर आप कुछ स्पेशल तैयार कर रही हैं. वाह जी वाह, मुंह में पानी भी आ गया. लेकिन खाइएगा आप, हमारे दिल को ज़रूर ये फीलिंग आ जाएगी. एंड हैव अ वंडरफुल टाइम रोशनी, आपके लिए भी हम गाने चलाते जाएंगे ताकि आपकी ये जो आफ्टरनून है आपके खाने के साथ मीठी मीठी तो हो जाए एंड मधुर गानों के साथ हम इसे कर देंगे. साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना है इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कहते हैं एक ब्यूटीफुल गाना फॉर मिस्टर भगवत विदेशी और साथ ही आपके प्यार अनुषा के नाम. बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही प्यारे मैसेजेस डेडिकेशन 54991294 पर. एंड साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर मामा सूर्यमती, ये है फॉर डॉटर चेतना सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज फ्रॉम ऑल संपत परिवार. उनके लिए भेजा है बहुत सारा प्यार. सो वेल चेतना, आपके लिए गुड विशेज एंड गुड विशेज टू एवरी वन जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Plug and play.
1: RM2 Radio Masti.
2: सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान अनुष्का शर्मा और ये गाना रहा वेरी वेरी पॉपुलर. चलिए दोस्तों

0: तो कुछ ऐसे ही पॉपुलर सॉन्ग्स आपके लिए हम लेकर आए हैं, बिकॉज आपके इस संडे को बनाना है हमें फन डे, और साथ ही साथ इसे मैजिकल भी तो बनाना है हमारे इन प्यारे गानों के साथ. सो उम्मीद करते हैं इन गानों को आप भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सभी दोस्त. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल संडे आफ्टरनून. वेल, यहाँ पर कमला जी हमारा साथ दे रही है, वॉर्म वेलकम आपका, आपके लिए भी भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार. एंड आई डू होप यू आर एंजॉइंग योर संडे. वैसे कह रही हैं कि सफाई चल रही है, लेकिन ज़्यादा मत थक जाइएगा, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालिएगा. और अभी के लिए तो इट्स नाइस टी टाइम, सो कुछ काम करने के बाद गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ज़रूर पीजिएगा. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं कहते हैं दैट एंजॉइंग द सिलेक्शन. थैंक यू जी. आप है प्रकाशवती जी, बेल्जियम में कह रही हैं इस वक्त 10 डिग्रीज है, यानी कि सर्दियों में आप हमारा साथ दे रही हैं. और यहाँ पर भी धीरे धीरे सर्दी का जो एहसास है होना शुरू हो चुका है, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी फील होने लगी है. सो थैंक यू सो मच प्रकाशवती जी, लेकिन 10 डिग्रीज ये तो अभी तक नहीं हुआ है. सो अपना ख्याल रखिए आप, एंड थैंक यू फॉर एंजॉइंग द सिलेक्शन प्रकाशवती जी, आपके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार. वी ऑल्सो हैव अ डियरेस्ट यलेश हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं हमेशा सुनता रहता हूँ रेडियो मस्ती, और अगला गाना आप जरूर डेडिकेट करें फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम, आपके पूरे परिवार के नाम. बिल्कुल यलेश, जरूर करेंगे एक स्वीट सा गाना डेडिकेट आपके लिए एंड फॉर योर फैमिली. साथ ही यहाँ पर कविता जी हमारा साथ दे रही हैं, आप नाम में ही है कविता, वाह जी वाह. सो अगला गाना आपका डेडिकेट करना चाहती है फॉर समवन वेरी स्पेशल, कहती है कि उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, अभी के लिए तो बातचीत बंद है लेकिन उनकी याद सता रही है. ओहो, आई नो दिस फीलिंग. लेकिन अभी के लिए जो अगला गाना है, आई एम श्योर कि जो आपकी ये फीलिंग है इसे थोड़ा सा और खास एंड स्पेशल बनाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो नाराजगी है वो बहुत ही जल्द दूर हो जाए. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ और दोस्त, यहाँ पर साथ देने के लिए शुक्रिया. आपका नाम नहीं आया, बट यू आर द सी साइड एंड एंजॉइंग द सिलेक्शन. थैंक यू जी. गाना होगा आपके नाम, और कहते हैं साथ दे रहे हैं हम भी सचिन, काजल, श्रवण, श्रावनी, अहान, बेचु परिवार, पुद्रदो विलेज से हमारे साथ कनेक्टेड है आप. सो हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून, वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Feels a musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: plug and play.
1: RM2 Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि मैं आपसे लूँ अलविदा, लेकिन जाते जाते यहाँ पर वी हैव अ हार्ट टचिंग मैसेज. वेल, कहते हैं 2 weeks ago आई लॉस्ट माय डैड इन मॉरिशस एंड आई एम स्टिल प्रोसेसिंग द लॉस. आई वाज एबल टू अटेंड द फ्यूनरल कमिंग फ्रॉम सीशेल्स एंड एक गाना स्पेशली फॉर योर डैड इन हेवन. विद्या, सीशेल्स से हमारा साथ दे रही हैं आप. आई नो ये एक ऐसा लॉस है जिससे हम शायद कभी भी लाइफ में प्रोसेस ना कर पाए. एंड बहुत सारा प्यार आपके लिए विद्या, स्टे स्ट्रॉन्ग. एंड वेल, नेक्स्ट ट्रैक होगा आपके नाम. Equally goes out to all the lovely dads जो हमारा साथ दे रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच जो भी आप हमारे लिए करते हैं. मौके तो हमें कम ही मिलते हैं आपको थैंक यू कहने के, लेकिन जब भी मौका मिलता है दिल से कहेंगे आपको थैंक यू. एंड अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है सो ऑलवेज मेक देम फील स्पेशल, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे तभी उन्होंने पेरेंट्स बनाए. सो लव योर पेरेंट्स ऑलवेज. और इसी ने ब्यूटिफुल ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए कहीं मत जाइए. स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ एंड हैव अ वंडरफुल संडे. नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर ऑल द लवली डैड्स, स्पेशली फॉर योर डैड विद्या. साथ देने के लिए शुक्रिया. दिस वन गोज आउट फॉर यू एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती.

0: कायम है। फ्रेंच भाषा का स्तर अब अभिभावकों और अध्यापकों दोनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्कूल सर्टिफिकेट के हालिया परिणामों में आधे से भी कम विद्यार्थियों ने फ्रेंच में डिस्टिंक्शन या क्रेडिट हासिल किया है और 13,000 छात्रों में से केवल 3% छात्रों को ही ग्रेड 1 मिला। शिक्षकों के अनुसार इस गिरते स्तर की एक बड़ी वजह बच्चों का ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताना और पढ़ने की आदत में कमी आना है। गोपो के लाउन माउंटेन में दक्षिण पूर्वी की इस ऐतिहासिक पहाड़ी की प्राकृतिक संपदा को बेहतर समझने के लिए आवर हेरिटेज फाउंडेशन ने एक विशेष अध्ययन शुरू किया है। इस पहल के तहत दुर्लभ और स्थानीय पौधों, औषधीय वनस्पतियों तथा पहाड़ी पर फैल रही बाहरी प्रजातियों की पहचान की जा रही है। साथ ही इस पहाड़ी से जुड़े स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान और जीवन शैली पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विदेश स्तर पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी ने रेलवे क्रॉसिंग पर एक सार्वजनिक बस को टक्कर मार दी जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। तूफानी लेन कोलाबू तेरूज में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल मुनाफ जुमिया इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम के 5 बजे उन्हीं के मकान कोलाबू तेरूज से निकालकर दफनाने के लिए रिश्तेया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Music, Takta Kata.
2: RM2, Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: आपका सुंदर संदेश शाम संजय के साथ ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन। सभी लिसनर्स को इन मॉरिशस एंड अब्रॉड नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम।

0: अजी प्यार तो किया है ना, चोरी तो नहीं की, सो फिर क्यों पछताना।
1: रेडियो मस्ती।
0: आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं, आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो, किसी को सुन लिया करो। This one going for Malaji and the whole family from Quatre Bornes.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: थैंक यू फॉर मेकिंग दिस अ वीकली रेंडेवू आप सबों के लिए. जितने भी लोग हर संडे की शाम 4 से लेकर 7 बजे तक जुड़ जाते हैं रेडियो मस्ती के लहरों पर म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ, एंड दिस वन गोइंग स्पेशली फॉर नंदिनी जी. आपको भी जय सियाराम नंदिनी जी, एंड दिस वन गोज फॉर यू एंड फॉर योर होल फैमिली.

हर संडे शाम को हम मोहब्बत का एक आशियाना सजाते हैं रेडियो मस्ती के लहरों पर, जिसमें आप सब शामिल हो पाते हैं अपने मैसेजेस के जरिए, अपने प्यार अपनी मोहब्बत के जरिए। किसी ने क्या खूब लिखा है, कभी कोई शाम तुम ऐसे भी बिताना कि आना पास मेरे और वक्त भूल जाना।

0: ढलती शाम का जादू निराला होता है, जैसे तेरी आंखों का उजाला होता है। ये मैसेज आया है वाकवा से, और लिखने वाली हैं देविका रानी जी। लिखती हैं, थैंक यू संजीव फॉर दीज ब्यूटीफुल सिलेक्शंस, एंजॉयिंग विद गरम गरम चाय एंड भजा। आपके लिए, दिव्या के लिए, दिया के लिए, केशव के लिए और सोना जी के लिए जो इस समय काम पर हैं। थैंक यू फॉर एंजॉयिंग।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती
1: गाने में अंदाज को सुनकर बोलों को सुनकर पोर्टिस की नाशन जी ने अपने मैसेज में लिखा, आई थैंक ऑल माय सूफी मास्टर्स हु मेड मी व्हाट आई एम टुडे, आई फाउंड ऑल माय स्ट्रेंथ इन देम। हम भी आपसे सहमत हैं नाशन जी, क्योंकि हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। सूफी मास्टर्स हैव टॉट द वर्ल्ड व्हाट लव इज इंडीड। थैंक यू फॉर योर मैसेजेस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक टक टक टक संजय के साथ, योर वीकली रेंडेवू ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती संजय के साथ। और लेते हैं ये अगला मैसेज। दिस नेक्स्ट वन गोइंग फॉर हमारे दोस्त यलेश श्याम जी, जो हमेशा सुरीनाम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। क्यों है कोई इतना सुंदर, क्यों है कोई इतना सुंदर भर गया है दिल के अंदर, मासूम सी सूरत है दिल में बस गई मूरत है।

और ये मैसेज आया है ललिता जी की ओर से, लिखते हैं कि इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो जाए, जब वो अकेला होता है तो वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। थैंक यू ललिता जी।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: थैंक यू फॉर चूजिंग टू स्पेंड योर संडे आफ्टरनून लेट आफ्टरनून हमारे संगम रेडियो मस्ती एंड फॉर ट्यूनिंग टू लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक्स हमारे साथ सन ऑन द माइक. वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टेक टकटक एंड थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. नेक्स्ट वन गोइंग सिमी जी की ओर से फ्रॉम रोज हिल फॉर लव रोशन. साथ ही साथ हंसिनी जी की ओर से फॉर हबी विशाल युवांशी केवांशु एंड द होल डोमन फैमिली.

0: कि तेरे हुस्न पे कुर्बान हो जाऊं, तेरी बाहों में बेजान हो जाऊं। ऐसी नजाकत है तेरी सूरत की कि मैं तो तेरे गुलाम हो जाऊं। वाह, भेजने वाले ने क्या खूब भेजा।
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: इस समय शाम के 5:15 हुए हैं। थैंक यू फॉर योर न्यूमरस मैसेजेस। ये मैसेज आया है खुशनुआ से फ्रॉम द अपाडू फैमिली। लिखते हैं कि प्लेइंग डोमिनोज विद कजिन्स एंड एंजॉयिंग द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती। थैंक यू गाइस फॉर एंजॉयिंग म्यूजिक इन दिस वन एंड एंजॉयिंग फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम, गुड वाइब्स विद द फैमिली। इट कीप्स यू हेल्दी एंड कीप्स यू यंग। चले ये अगला गाना हो जाए अनिता जी के लिए, जो फिकम फ्लक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर द होल फैमिली। थैंक यू। सो कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5499129294। एंड दिस नेक्स्ट वन गोइंग स्पेशली फॉर कृष्णी जी, जो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं।

ब्यूटीफुल वर्डिंग्स जो दिल में उतर जाते हैं फ्रॉम द फिल्म पुरी सरनूर जी गोइंग स्पेशली फॉर विमी जी अपनी आंखों के सितारों को दिल में उतारे हमदम नेक्स्ट वन गोइंग फॉर बेटी नितिशा दामान अश्विन हर्षी निवांशी दिगंबर फैमिली गणेश फैमिली रंजया फैमिली कुनल एंड द होल सीताराम फैमिली जिन्होंने भी ये मैसेज भेजा है आपकी पूरी फैमिली आपके सभी रिश्तेदारों के लिए अगला गाना थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग स्पेशली प्लीज़ अपना नाम ज़रूर शामिल करें अपने मैसेज में नहीं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर ऑल आवर ब्यूटीफुल लिसनर्स जो कालू जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीमा जी की ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर जीवन फैमिली ऑफ मॉडल बेयर आज उनके बेटे नीलेश का नवा जन्मदिन है एंड हैप्पी बर्थडे विशेज फ्रॉम डैड विशाल टू ब्रदर्स यादव एंड विदेश की ओर से एंड फ्रॉम होल फैमिलीज एंड फ्रेंड्स

और ये गाना जाता है उमिष्ठा सिन्हा नारायण जी की ओर से फ्रॉम कालबास फोहर उनके जन्मदिन के मौके पर। उमिष्ठा जी शुभकामनाएं फ्रॉम मामी सती मामू अक्षय भाई उजेश्विन प्रणव एंड द होल सिचन फैमिली ऑफ रिवेजोंपा।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Music tak takata.
1: RM2 Radio Masti.
2: पिछले रविवार को हमने बात की थी अबाउट द फ्री बाय फ्री रूल, और सप्ताह के दौरान काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा इस बारे में द फ्री बाय फ्री रूल. आज हम इससे ये साबित होता है कि पीपल लिसन टू दिस टिप्स एंड दे वांट टू नो, दे वांट टू बी ऑन अवांगार्ड जैसे कहते हैं. एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टाइलिंग टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, जिसमें फ्री महत्वपूर्ण पहलू हैं. फ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस. फर्स्ट डायमेंशन, यू प्ले विथ प्रोपोर्शंस. द सेकंड डायमेंशन इज मिक्स एंड मैच. एंड द थर्ड डायमेंशन इज व्हाट वी कॉल द सैंडविच रूल. सो पहला डायमेंशन, प्ले विथ प्रोपोर्शंस. कंट्रास्ट इज की. इफ यू आर वेयरिंग बैगी ओवरसाइज्ड ट्राउजर्स, बैलेंस द वॉल्यूम बाय वेयरिंग अ फिटेड टॉप और ए स्ट्रक्चर्ड जैकेट. The second dimension, mix and match. इसमें you combine opposites to make outfits more interesting. Pair a casual sweatshirt with tailored trousers or a dressy silk camisole with distressed denim. And the third dimension, what we call the sandwich rule, इसमें you tie your outfit together visually by sandwiching your look. For example, matching the color of your shoes to the color of your top or outerwear to create harmony. So these are what we call styling techniques and tricks.
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Music Tak Takata.
1: RM2 Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: ओरिएंटेड रेडियो मस्ती,
2: क्योंकि समय बहुत ही कम है. नेक्स्ट वन गोइंग फ्रॉम भरद्वाज विदेशी फॉर अनुषा किरण और मोहतबा. जितने भी लोगों ने मैसेज किया लेकिन जिनके मैसेज हम शामिल नहीं कर पाए, बिकॉज सो मेनी ऑफ देम. फॉर मॉम सूर्यामती हू स्पीडिंग अबव डे टुडे, फ्रॉम बेटी यशदेव, सुविराज, मानव, अरविंद फ्रॉम एनएस फ्लोर, अक्षय जी के लिए जो इस समय बस ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम सती और गजों पर, एंड ऑल्सो भाई कमलदीप जी के लिए जो इस समय रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं. नमस्ते संजी, हैप्पी बर्थडे टू वीना बीवा ऑफ लेस्पेरांस का चिमिते. विशेस कमिंग फ्रॉम मौसी रोशी, राज, सुनीता, सलोनी, विकास, निवे, यानी कि निफ्यूज नीतीश फ्रॉम मिला राम दिगल जी ऑफ मोतबा ऑफ मोब्लॉक. सो 6 बजे आप सुनेंगे समाचारों, समाचार के बाद गीतों का ये सुरीला सफर हम जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती.

नमस्कार। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। खोपो के लायन माउंटेन में एक ऐतिहासिक पहाड़ी की प्राकृतिक संपदा पर विशेष अध्ययन। आवा हेरिटेज फाउंडेशन की इस पहल में दुर्लभ पौधों, औषधीय वनस्पतियों और बाहरी प्रजातियों की पहचान की जा रही है। मॉरिशस में एचआईवी संक्रमण को लेकर चिंता बनी हुई है। साल 2025 से अब तक 499 नए मामले दर्ज। इसी के मद्देनजर कुडो वाटरफ्रंट में इसी समय इंटरनेशनल एड्स कैंडललाइट मेमोरियल का आयोजन किया जा रहा है। फ्लक के बाद अब पोर्टली के जीटू अस्पताल में भी नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने इसका उद्घाटन किया। मॉरिशस निवेश के लिहाज से अफ्रीका का सबसे सुरक्षित देश बनकर उभरा। हेनली एंड पार्टनर्स की नई रिपोर्ट में मॉरिशस को दुनिया में 61वां और अफ्रीका में पहला स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेदरलैंड्स के साथ भारत के संबंध और मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के

0: इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। घोंपो के लाउन माउंटेन में दक्षिण पूर्व की इस ऐतिहासिक पहाड़ी की प्राकृतिक संपदा को बेहतर समझने के लिए आवर हेरिटेज फाउंडेशन ने एक विशेष अध्ययन शुरू किया है। इस पहल के तहत दुर्लभ और स्थानीय पौधों, औषधीय वनस्पतियों तथा पहाड़ी पर फैल रही बाहरी प्रजातियों की पहचान की जा रही है। साथ ही इस पहाड़ी से जुड़े स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान और जीवन शैली पर ध्यान दिया जा रहा है। करुणा लालू।
1: देश के दक्षिण पूर्व के प्राकृतिक दृश्य में अपनी विशिष्ट आकृति के लिए पहचाने जाने वाले लायन माउंटेन की जैव विविधता तथा स्थानीय निवासियों और इस ऐतिहासिक पहाड़ी के बीच समय के साथ बने संबंधों पर एक अध्ययन किया जा रहा है। शोधकर्ता पर्यावरण विशेषज्ञों और क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहां मौजूद स्थानीय और आक्रामक प्रजातियों की पहचान और औषधीय पौधों का भी अध्ययन किया जा रहा है।
2: En jumla je nous qu'il a fallu utiliser et les comprend qui dans le futur s'il y a détruire ça sans un plan B de replantation ou quoi, comment ça va affecter dans le futur? Pour les bananes, coupe d'autres modes de vie ou quoi, parce que pour nous aussi c'est important de préserver ça patrimoine immatériel qui est associé avec la façon de faire. Alors à cause de ça, qui commence à nous besoin d'un plan de survie, conservation et sensibilisation et aussi replantation ou quoi, ce qui est besoin pour Banjimoun.
1: इस पहल के माध्यम से आवर हेरिटेज फाउंडेशन का उद्देश्य लायन पर्वत के बेहतर संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही इस पर्वत से जुड़ी पारंपरिक प्रथाओं और स्थानीय ज्ञान को भी महत्व देना है।
0: फ्रेंच भाषा का स्तर अब अभिभावकों और अध्यापकों दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्कूल सर्टिफिकेट के हालिया परिणामों में आधे से भी कम छात्रों ने फ्रेंच में डिस्टिंक्शन या क्रेडिट हासिल किया और 13,000 छात्रों में से केवल 3% विद्यार्थियों को ही ग्रेड 1 मिला। शिक्षकों के अनुसार इस गिरते स्तर की एक बड़ी वजह बच्चों का ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताना और पढ़ने की आदत में कमी लाना है। दुनिया भर में आज समलैंगिकता के खिलाफ भेदभाव और घृणा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाता है जब 17 मई 1990 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने होमोसेक्सुअलिटी को मानसिक बीमारियों की सूची से हटा दिया था, जिसे मानव अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। हालांकि कानूनों और अधिकारों में प्रगति के बावजूद जमीनी स्तर पर भेदभाव और अस्वीकार की भावना अब भी कायम है। मॉरिशस में HIV संक्रमण को लेकर चिंता बनी हुई है। साल 2025 में अब तक 491 नए मामले सामने आए हैं और 25 से 44 वर्ष की आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। इसी के मद्देनजर आज शाम इसी समय कुदो वाटरफ्रंट में 21वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स कैंडललाइट मेमोरियल का आयोजन किया जा रहा है, जहां मोमबत्तियां जलाकर HIV एड्स से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रतिनिधि, कलाकार, परिजन और HIV के साथ जीवन जी रहे लोग शामिल हैं। फ्लैग के सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल के बाद अब पोटली के जीतू अस्पताल में भी एक नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट कायम की गई है। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू और चुनाव क्षेत्र के सांसदों की उपस्थिति में हाल में किया गया। इस नई इकाई का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल और आपात स्थिति वाले मरीजों को तेज और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने कहा कि जल्द ही अन्य इलाकाई अस्पतालों में भी ऐसी ट्रोमा एन इमरजेंसी यूनिट कायम की जाएगी। और ये विषय जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, गंगा तालाब में पेश आई घटना के बाद इस पवित्र स्थल में मर्यादित आचरण और उचित वस्त्र की आवश्यकता फिर से चर्चा में आ गई है। चलिए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
3: ये देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक है गंगा तालाब। जो लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों का स्वागत करता है जो इस जल स्थल के सामने श्रद्धा अर्पित करने आते हैं, जो भारत की गंगा नदी की याद दिलाता है। लेकिन गांव बासे दुनिया भर के पर्यटकों द्वारा नियमित रूप

0: से देखा जाने वाला एक स्थल भी है। ये जगह विशेष रूप से अपनी शांति के लिए सराही जाती है।
1: आस्था किसी पर थोपी नहीं जाती और जिन लोगों की आस्था है उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो एक साथ शांति से रहना कठिन हो जाएगा।
0: यदि कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें इस स्थल पर पालन करने वाले नियमों के बारे में पहले से सूचित किया गया है, तो अन्य लोग इसे यहाँ पहुँच कर ही जानते हैं।
1: हम ध्यान रखते हुए नियमों का पालन कर रही हैं। मैं अपने दौरे के दौरान ज्यादा समीप नहीं गया क्योंकि मैंने सही पोशाक नहीं पहना हुआ है, पर अन्य धर्मों और संस्कृति के बारे में मुझे जानकर खुशी हो रही है। मैंने शॉर्ट पहना हुआ है और अपने गाइड के साथ आई हूँ, जिन्होंने हमें बताया कि पैरों को ढकना चाहिए तथा यहाँ के मंदिरों में धार्मिक विधियों के बारे में भी समझाया और ये भी बताया कि हमें स्वयं को एक टॉवल के साथ ढकना चाहिए और मंदिरों के अंदर जाते समय जूतों को बाहर उतारना चाहिए। मेरे लिए ये एक अच्छा अनुभव रहा।
0: ये सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी सभी के लिए स्पष्ट रूप से सुलभ हो, नेशनल हेरिटेज फंड इस समय इस स्थल पर पालन किए जाने वाले आचार संहिता पर काम कर रहा है, जिसे 2023 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। नेशनल हेरिटेज फंड के अध्यक्ष कहते हैं,
2: एक
1: धार्मिक संगठन ने प्रांगण में यहाँ एक नोटिस बोर्ड लगाया है, पर इस घटना के बाद स्थल पर जगह जगह पर ज्यादा साफ व सरल तरीके से समझाया हुआ बोर्ड लगाना होगा। NHF और मंत्रालय के सहयोग से हम चंद गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं जो निसंदेह स्थल पर दृष्टिगोचर होना चाहिए।
0: एक बार ये तैयार हो जाने पर इसे कला और संस्कृति मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ये मंत्रिपरिषद की बैठक में विचार के लिए भेजा जाएगा। इस बीच टूरिज्म अथॉरिटी को संबंधित मंत्रालय की मांग पर गंगा तालाब पर पर्यटकों को पालन करने योग्य प्रथाओं के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाने का काम सौंपा गया है।
3: मॉरिशस निवेश के लिहाज से अफ्रीका का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद देश बनकर उभरा है। ब्रिटिश संस्था हेनली एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो की नई वैश्विक निवेश जोखिम और आर्थिक मजबूती रैंकिंग में मॉरिशस को विश्व स्तर पर 61वां स्थान मिला है और वह पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था का खुलापन और आय के विभिन्न स्रोत मॉरिशस की सबसे बड़ी ताकत मानी गई है। वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर कायम, जबकि डेनमार्क और नॉर्वे उसके बाद हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर की खबरों में मॉरिशस के पूर्वी हिस्से में थुलोदूस गांव में भक्ति, श्रद्धा और शिवमय वातावरण का अद्भुत संगम हाल में देखने को मिला, जहां काली शक्तिशाली संगठन के तत्वावधान में मासिक शिवरात्रि के अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक संध्या का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे से शुरू हुए इस विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु महादेव की भक्ति में लीन नजर आए। अशिता रघु की विशेष रिपोर्ट पेश है।
1: पिछले वर्ष से मॉरिशस के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हो रही मासिक शिवरात्रि श्रृंखला का ये विशेष आयोजन इस बार थुदुदुस में हुआ, जहां युवा भक्तों और महादेव के अनुयायियों को मंच पर अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिला। भजन, शिव स्तुति और मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। हर हर महादेव के जय घोष के बीच हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विशेष मासिक अभिषेक भी संपन्न हुआ। दीपों की रोशनी, शंख ध्वनि और भक्तों की आस्था ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया, जो महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम का उत्सव दर्शा रहा था।
4: त्याहूस से आई हूँ यहाँ पर थुलोदूस में मासिक शिवरात्रि का आनंद लेने। यहाँ पर एक आनंदमय वातावरण है, जहाँ जहाँ शिव बुलाते हैं हम आ जाते हैं।
5: मेरे आराध्य है और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अपनी धर्म के लिए रक्षा करूँ और एक धर्म रक्षक बनूँ।
1: महादेव को भोले, रुद्र व नटराज भी बुलाती हैं और यहाँ के प्रत्येक युवा कलाकारों के लिए महादेव के चरणों में भजन व कला प्रस्तुत करना आशीर्वाद समान रहा।
2: शिवा
1: को नटराज के रूप में पूजा करती हैं और हमारी टोली यहाँ महादेव को अपनी कला, भजन और नृत्य समर्पित करने आई है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, एक बहुप्रतीक्षित अवसर रहा पूर्व के हजारों भक्तों को एक साथ लाने का तथा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का।
6: आज एक बहुत गर्व की बात है कि मासिक शिवरात्रि तुलदुस में हो रहा है और आज मैं और मेरी पत्नी हम यजमान इस मासिक शिवरात्रि का।
1: इसी अवसर पर सत्यम शीर्षक पर आधारित भजनों वस्त्रोतों पर प्रियुली राम सेना द्वारा एक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया। भक्ति, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर ये मासिक शिवरात्रि आयोजन एक बार फिर श्रद्धालुओं के दिलों में महादेव के प्रति प्रेम और आस्था की ज्योति ज्वलित कर गया।
3: फ्लाकेसर अनिरुद्ध जगनाथ अस्पताल के बाद अब पोटली के जीतू अस्पताल में भी एक नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट कायम की गई है। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया।
7: डॉक्टर जीतू अस्पताल देश के उन अस्पतालों में से एक हैं जहां सबसे अधिक मरीज आते हैं, दिन में 1000 से ज़्यादा, जिनमें गंभीर मामले भी शामिल होते हैं। नई ट्रोमा इमरजेंसी यूनिट के शुरू होने से मरीजों की देखभाल अधिक तेज तथा व्यवस्थित हो सकेगी। मरीजों की गंभीरता के अनुसार प्राथमिकता तय की जाएगी।
8: Alors, nous envisageons ce système-là, nous mettons l'eau couleur, quand il donne ce 25 tomes, nous connaissons qu'il y en a besoin d'un traitement plus avant qu'il est là. Ça pour aider qui nous tient à une personne qui est un peu plus pas bien, plus pas stable, là nous donnons un traitement assez plus vite que les autres. Dans Accident and Emergency, c'est 650 personnes pour 24 heures. Et dans le Unsorted, nous mettons les Green Zone. Là-bas, c'est 500 environ, de 8h matin jusqu'à 10h le soir.
7: इस यूनिट की जिम्मेदारी सामूहिक आपातकालीन चिकित्सकों के हाथों में होगी।
8: Une personne venue, disons une polytraumatisée, une blessée beaucoup, lui pour superviser pour une urgentiste. Là, fait tout, get lui, stabilise lui, fait ce scan, fait tout ce qu'il a besoin de faire, ce écho, tout cela, stabilise tout. Là, c'est pour avoir son opération à voyer, c'est pour avoir son intensif pour avoir.
7: नई इकाई में एक छोटी ऑपरेशन थिएटर भी है। अन्य क्षेत्रीय अस्पतालों में भी जल्द ही इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी।
9: Ça va travailler là, pas si possible, si nous pas gagnons un corps médical bien fort, bien soudé, qui bien dynamique. Nous tout connaissons, il y a un manque de docteurs, il y a un manque d'infirmiers, mais malgré ça, nous pouvons gagner d'autres collaborations, nous pouvons faire ce travail-là.
7: ये परियोजना सरकारी बजट का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है।
3: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एक आपात बैठक लगाई है। इटुरी प्रांत के कई इलाकों में संक्रमण फैलने, संदिग्ध मौतों और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के बाद निगरानी और बचाव कदमों को और तेज कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ आवश्यक चिकित्सीय सामग्री भी भेजी जा रही है। वहीं युगांडा, दक्षिण सूडान और जाम्बिया जैसे देशों में भी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
0: कोंगो के इतुरी राज्य में सेहत की ये मुश्किल हालत अब वैश्विक चिंता का विषय बन गई है। इबोला के करीब 250 संक्रमित मामले पाए गए हैं और मौतों की तादाद 80 तक पहुंच गई है। किंगशासा में भी कुछ संक्रमित मामले पाए गए हैं। इबोला के शुरुआती संकेतों में बुखार, दर्द, थकान, सर दर्द, गले में खरोच, उल्टियां, डायरिया, रैश और बिगड़ती हालत में ब्लीडिंग भी होने लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आपात स्थिति की घोषणा की क्योंकि तंजीम के मुताबिक संक्रमितों का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। फिलहाल 8 प्रयोगशालाओं में वायरस की पुष्टि की गई है और दूसरे 3 स्वास्थ्य जोन्स में शक्की मामले और मौतें दर्ज हैं। पड़ोसी देश युगांडा में भी 2 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है।
3: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को हुए एक दर्दनाक रेल हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत जबकि 32 अन्य घायल बताई जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी ने रेलवे क्रॉसिंग पर एक सार्वजनिक बस को टक्कर मार दी जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेदरलैंड्स के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण और भविष्य की दिशा तय करने वाला बताया। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया समझौते और साझेदारियां भारत और नेदरलैंड्स की दोस्ती को नई गति देंगी। दोनों देशों के बीच

0: 17 महत्वपूर्ण समझौतों और सहयोग योजनाओं पर सहमति बनी है। सुमैरा अकबर अली।
1: भारत और नेदरलैंड्स ने 17 रणनीतिक समझौते तय किए हैं जो जल, कृषि, टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे अहम क्षेत्रों पर मबनी हैं। इनसे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते एक नए सतह तक पहुंच गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में दुनिया की सबसे गतिशील अर्थनीति है जो मुसलसल तौर पर गए 12 वर्षों से तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: इलेक्ट्रॉनिक जो पहले भारत का बड़ा इम्पोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना, स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है।
1: एक कार्य सत्र के दौरान डच प्रधानमंत्री ने कहा कि नेदरलैंड्स भारत के साथ रिन्यूएबल ऊर्जा, प्रतिरक्षा, हाईटेक आदि सेक्टरों में बड़ी ऐतिहासिक परियोजनाएं चलाने के लिए आशावादी है।
3: We can drive ambitious innovation to strengthen both our countries.
1: हम एक साथ दोनों देशों की काबिलियतों को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, जल संचालन, प्रतिरक्षा एवं हाईटेक जैसे अहम सेक्टरों में ये क्षेत्र हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारा सहयोग बरसों पुराना है।
3: We've learned that we have a great deal to offer each other.
1: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस औपचारिक नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारत नेदरलैंड्स रणनीतिक साझेदारी 2026-2030 पर एक रोड मैप को भी आम किया गया है।
0: और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश के दक्षिण पूर्व में रह रहकर बरसात होगी। पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर आज रात को भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। कल दिन के दौरान के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम कुछ खराब हो सकता है। दक्षिण पूर्व की दिशा से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 28 से 30 और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्यास्त 5:40 पर, सूर्योदय 6:32 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Shok samachar suni, Grand Port Road, Nouvelle-France, mais... 80 साल की इटी येजोल की श्रीमती अनीता जालिम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पर बुत्सिया, लोग उन्हें सांता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे सेवन जालिम के मकान नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। बैटका रोड मोंगू में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की मिंत्रा आनंदनी मातापालत की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम भगमुनिया, लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे बिनेश मातापलट के मकान मोंगू से

0: Hakaran Timson's Karkili, Boamoshon Kishmshan, Pumili, JJ Geek Remission tomorrow at 11 AM. Route Boundary Rosilme, Rosilme St. Patrick Church ke pass, 67 saal ki, 67 years old ki, Bhagmanya Sibalak ki mrityu ho gayi hai. पैदाइश नाम काली, लोग उन्हें फिफी के नाम से अधिक जानते थे, उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोते मोगोश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. क्रिमेशन रोड प्लैन दे रोश में 74 साल की, 74 ईयर्स ओल्ड की देवानंद जंगटू की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान प्लैंदेगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM. अवेन्यू कुलविल बेलरोस में 70 साल के, 70 ईयर्स ओल्ड की श्री श्याम चिनिया की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान बेलगो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. वालोरी मुकामी 61 साल के, 61 ईयर्स ओल्ड के सिपरसाद एमराज की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें दाना के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी कल सुबह के 8 बजे मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्टोंपिया की भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 8 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. RM2
2: Radio Musti.
3: Malou la caisse, me tient en pouce. Mal pay mobile, me tient en pouce. Mal restaurant, me tient en pouce.
4: Hé, hey, calmé! Avec le Tri Mighty Money, t'es capable de gagner des millions de roupies in the pocket. Jusqu'à le 10 juillet, tout au paiement et top up te fait à l'eau Mighty Money, donne-toi sens, gagne des millions, 500 000 ou 300 000 roupies cash et plein les autres cadeaux.
5: Allô, qui te dit?
3: Eh, hey, avec Mighty, in the pocket!
6: Mighty Money est un service de Cell Plus Mobile Communication Limited qui opère sous licence de la Banque de Maurice. Termes et conditions applicables.
7: Mighty? Mighty, c'est ça!
1: RM2
2: Radio Musty.
1: Music, tak tak tak.
2: RM2 Radio Musty.
8: 1, 2, 3, 4.

0: टक टक टक
1: ऑरेंज रेडियो मस्ती
2: शनिवार की शाम 6:30 होने को हैं। सभी सुनने वालों को संजय के वसे प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेलकम वेरी वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टक टक टक।
3: चाहेंगे तुम्हें बस

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपके बेहतरीन से बेहतरीन गाने सुनाते रहेंगे। बस आपका प्यार हमें मिलता रहे और गीतों का ये कार्यक्रम, रोमांटिक नगमों का ये सिलसिला हम अगली बार अगले वीकेंड को जारी रखेंगे। थोड़ी देर में हमारे बाद हमारे दोस्त निखिल आपका साथ निभाने आ रहे हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार दें जितना कि आपने हमें दिया, उससे बढ़कर भी क्यों नहीं। एंड आई मीट यू टुमारो, आई मीट यू ऑन थर्सडे आफ्टरनून ऑन रेडियो मनोरंजन 5:30 से लेकर 6 बजे तक इन राम रसधारा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, टेक गुड केयर ऑफ योर डियर्स एंड नियर्स एंड डियर्स। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, जय सियाराम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: गुड इवनिंग मॉरिशस, और स्वागत है आप सबका बॉलीवुड सिज़ला में, ओनली ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूं निखिल, और अगले दो घंटे हम साथ में शाम से रात का सफर तय करते हैं। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होगा, थोड़ा रोमांस, थोड़ा सुकून और बॉलीवुड वाइब्स भर भर कर, परफेक्ट फॉर कोल्ड संडे नाइट बिफोर ब्रांड न्यू वीक बिगिंस। स्टे क्लोज, आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, म्यूजिक अभी बस शुरू हुआ है।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: संडे नाइट काफी अजीब होती है ना, वीकेंड भी खत्म हुआ नहीं है और मंडे का टेंशन अभी शांति से आहिस्ता दस्तक देने लगता है। तो चलिए उस टेंशन को थोड़ा स्लो करते हैं एक और खूबसूरत बॉलीवुड

बॉलीवुड नंबर के साथ। और नंबर की बात चली है तो आपके लिए एक और मैजिकल नंबर 5499-1294, 5499-1294, खासकर आपके डेडिकेशंस और प्यार भरे मैसेजेस के लिए हमें रहेगा इंतजार। आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। कमिंग अप नेक्स्ट, छल्ला इन द वॉइस ऑफ रवि शैगिल।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Cold nights of soft Bollywood music का ये जो combination है ना वो honestly timeless है और Mauritius में आज की हवा भी बिल्कुल वही feel दे रही है, थोड़ी ठंडी, थोड़ी musical, थोड़ी very intimate. और intimate से याद आया, आपके intimate से messages, इनसे ही तो हमें गर्मी मिल रही है, हमें warmth मिल रहा है इस ठंड से लड़ने के लिए. तो पढ़ लेते हैं first message from Saint-Julien. Hi Nikhil, good evening, I'm Aarti Sibon from Saint-Julien. I want to dedicate a nice song for my husband Umesh and three kids, Kritin, Prashant, Khushi. Thank you very much, Aarti ji, for your lovely message. ये अगला गाना हम करेंगे और खासकर उनके नाम. और हम ये मैसेज आया है from Oshnwa, Super Magical Entertainment with Superstar Nikhil. Thank you very much. Dagan, Shweta, Ravish, Prisha, Lavisha and Apadu family from Oshnwa. साथ ही साथ हमें ये special message आया है, ये मैं मिस नहीं कर सकता, कि भावना जी ने हमको मैसेज भेजा है एक गाना उनके नाम, और ख़ासकर उन्होंने धुरंधर फिल्म का एक गाना मांगा है. स्पेशली गोज आउट टू स्वानिश, टू भावना हरसेल्फ, टू सुदर्श, टू पिंकी जी एंड तुलसी, क्या नाम है तुलसी जी का. तो ये गाना हम करेंगे उनके नाम. उसके बाद एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

और ये गाना हम स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे एक लव्य जी के लिए और आपके बेबी दर्श के लिए, स्पेशली फ्रॉम भावना राम प्रसाद फ्रॉम लवोचिया।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पूरी कायनात आपको देने में लग जाती है. या ये था एक वेरी ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर भावना जी. दो भावनाओं का हमने अभी डेडिकेशन पढ़ा, लेकिन ये जो अगला गाना आने वाला है ये मैंने अपने प्लेलिस्ट में लगाया ही था कि मुझको ये मैसेज मिला फ्रॉम रोशनी जी. हेलो निखिल जी, कैसे हो आप? ऑल गुड, थैंक्स फॉर तेरी मेरी कहानी एंड जाइए सैया, लव देम, थैंक यू वेरी मच. मे आई रिक्वेस्ट दिस सॉन्ग यू शबनमी फ्रॉम द मूवी सांवरिया प्लीज. और यहाँ पर आते आते, स्टूडियो में आते आते यही गाना मेरे जहन में बज रहा था. सो ये गाना काफ़ी स्पेशल होने वाला है जिनको ये पता नहीं, फ्रॉम द मूवी सांवरिया यू शबनमी. परफेक्ट फॉर दिस कोल्ड संडे नाइट. और आप भी हमें मैसेज भेज सकते हैं 5499-1294 पर. बताइए आज रात आप कहाँ से सुन रहे हैं और कौन सा गाना आपके संडे नाइट को कंप्लीट करता है.

इस गाने के लिए कि रोशनी जी को कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी अगर ऐसे रिक्वेस्ट हैं और ऐसे गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं, देन 5499-1294 इज योर मैजिकल नंबर फॉर टुनाइट। आप भी बन जाए हमारे सांवरिया।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: और ये अगला रिक्वेस्ट हमें आया है फ्रॉम टोनी जी फ्रॉम खुशबुआ. उन्होंने मांगा है कलंक का टाइटल सॉन्ग. जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये बोनस वर्जन आपने शायद कभी ना सुना. आई लेट यू अप्रिशिएट.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जैसे कि आप सुन रहे हैं, आज का शो बिल्कुल फास्ट लेन में नहीं है। आज हम थोड़ा धीरे चलेंगे, थोड़ा फील करेंगे और गाने को गाने की तरह सुनेंगे। गानों की बात चली है तो काफ़ी सारे गानों का जो फरमाइश है वो हमारे पास भरी पड़ी है आपके प्यार भरे मैसेजेस के साथ। लीजिए पढ़ लेते हैं एक आध आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस। फर्स्ट वन फ्रॉम गुडलैंड्स। नमस्ते जी, आई एम अमिता फ्रॉम गुडलैंड्स। प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय हस्बैंड वेद, बेटी मेघना, बेटा नितेश एंड फॉर द होल RM2 टीम। थैंक यू वेरी मच अमिता जी फॉर द लवली मैसेज। अगला गाना हम करेंगे आपके हस्बैंड और आपके बेटी और बेटा, उन दोनों के नाम, उन तीनों, आप चारों के नाम। जी हाँ, द मोर द मैरियर। जी हाँ, गुड इवनिंग जी, नाइस सिलेक्शन। सैयारा का एक गीत चला देना जी, प्रकाशवती जी से ये बहुत ही कंसाइज मैसेज हमें मिला है। जी हाँ, क्यों नहीं, सैयारा का अगला गाना हम करेंगे आपके नाम और आपके प्यारे लोगों के नाम। हेलो ऑल रेडियो मसी, नाइस कलेक्शन एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच। प्ले नाइस सॉन्ग फॉर मी टू, शहनाज जोगी ऑफ रिविया चौपा, हबी अश्विन के लिए, तीन बेटों के लिए और दोस्त फैमिली के लिए भी शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज जी फॉर द लवली मैसेज। हम करेंगे ये अगला गाना आपके नाम और अनदर मैसेज स्टार्टिंग विद सुपर सिलेक्शन ड्यूड, थैंक यू वेरी मच। आप जब ये मैसेज भेजते हो ना, तब मुझे लगता है कि एक मैं ही नहीं हूँ जो ये गाने पसंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द एनकरेजमेंट। रिक्वेस्ट टाइटल सॉन्ग मूवी क्या कहना। जी हाँ, थोड़ी देर में हम आपके लिए चला लेंगे, खासकर सचिन, काजल, श्रवण, श्रवणी, अहान एंड बिचू फैमिली ऑफ पुदोदो विलाज के लिए। और ये अगला मैसेज। नमस्ते जी, आई एम श्वेता हुकुम फ्रॉम बोनाकई, वांट टू डेडिकेट अ लवली सॉन्ग फ्रॉम सैयारा फॉर माय बिलव्ड हबी डुडू रोशन फ्रॉम हिज बुबू रानी, वांट टू टेल हिम लव यू सो मच हस्बैंड जी। ये जो दूदू बुबू होता है ना, ये बहुत प्यारा होता है भाई, लोगों को मजाकिया लगता है लेकिन इसमें बहुत बहुत बहुत सारा प्यार भरा है। श्वेता जी आप इसको जाने मत देना, आई एम श्योर आपके जो रोशन जी, आपके जो दूदू रोशन जी हैं वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही लकी हैं और हम भी लकी हैं कि आप दोनों ने इस

0: गाने का, इस फिल्म के गाने का रिक्वेस्ट किया है, फ्रॉम द मूवी सयारा, लेट्स हैव बर्बाद इन द वॉइसेस ऑफ द रिश एंड जुबिन नौटियाल, ओनली ऑन RM2.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: वेलकम बैक मॉरिशस, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड सिज़लर ओनली ऑन रेडियो मस्ती, और हम आ चुके हैं हमारे शो के सेकंड आवर में, जहां अब रात और गहरी हो चुकी है और हमारे गाने और सोलफुल होते जाएंगे. सो वेयरएवर यू आर टुनाइट, स्टे विद अस बिकॉज़ द बेस्ट वाइब्स आर स्टिल अहेड.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: म्यूजिक का सबसे जो ब्यूटीफुल पार्ट मुझे लगता है वो पता है क्या है? कभी कभी वो हमारे इमोशंस को एक्सप्लेन कर देता है कि लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, बस संगीत ही बोल देता है कि हम अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। और अगर हम लफ्जों का इस्तेमाल करके उसको बोलने की कोशिश करें तो शायद ही वो पूरा इमोशन हम वर्ड्स में डाल पाए। इसी ख्याल को लेते हुए अगला गाना, वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम द मूवी अलादीन, यू मे बी। अगर आपके पास भी कोई यू मे बी है तो आपके लिए लाइन खुली है 5499-1294। हमें इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे मैसेजेस का। तब तक के लिए अलादीन से यू मे बी।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, विंडो के बाहर थोड़ी ठंडी हवा, अंदर हल्की हल्की सी लाइटिंग और बैकग्राउंड में ओल्ड स्कूल बॉलीवुड। बस लाइफ को कभी कभी इतना ही सिंपल होना चाहिए। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू सोफिस्टिकेशन। कभी कभी सिंपल सिंपल बातों में हम अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। एक ही गाने को रिपीट करते करते हम वही खुशियाँ दोहराते हैं, जैसे कि ये गाना विच इज़ वेरी स्पेशल फॉर सचिन, काजल, श्रवण, श्रवणी, अहान एंड बिचू फैमिली ऑफ फोटो डो विलाज। जी हाँ, ये था द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी क्या कहना, जो रिक्वेस्ट किया था हमारे भाई ने। और साथ ही साथ हम ये अगला गाना करना चाहेंगे श्याम जी के

श्याम जी ने हमें बहुत ही एक अच्छा सा एक रिक्वेस्ट भेजा है। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। अनफॉर्चुनेटली वो आज के प्रोग्राम में हम चला नहीं पाएंगे, लेकिन आपके लिए खास हम चलाएंगे। ए दिल लाया है बहार, फॉर योर ग्रैंडसन ऑन बिहाफ ऑफ दादा श्याम, दादी प्रेमिला, मामा केशिनी एंड पापा हंसले, और सभी जो अभी फैमिली के साथ हमें सुन रहे हैं, उन सभी के लिए हम करना चाहेंगे क्या कहना टाइटल सॉन्ग।

0: RM2, your number one Bollywood radio station.
1: जी हाँ, इसी ओल्ड स्कूल बॉलीवुड में वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम द मूवी युग पुरुष, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, ऐ मेरी जान।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कभी नोटिस किया है कि रात के आते आते वो जो लव दोपहर को थकते नहीं थे बात करते करते, वो भी थोड़े खामोश हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं और बस म्यूजिक का मायना रहता है। ये वो टाइम है जब लाउड सॉन्ग्स भी दिल सॉफ्टली सुनता है, बोल पर लिरिक्स पर ज्यादा ध्यान देता है, और जो सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं वो सीधा दिल में उतर जाते हैं भाई। ऐसा ही एक सॉफ्ट सॉन्ग की फरमाइश हमें आई है, ये काफ़ी लंबी फरमाइश है, फ्रॉम वाली दिप्रैत। पूजा जी ने हमको मैसेज भेजा है, प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग आते आते फ्रॉम द मूवी चोरी चोरी। स्पेशल डेडिकेशन टू माय हस्बैंड आकाश, माय बेबी विहान, मॉम श्रद्धा, डैड बिरज, ब्रदर प्रवीण, सिस्टर इन लॉ हेना, नीस रुत्वी, गुलाब फैमिली ऑफ खांजाब एंड द चिल्ड्रंस कोर्ट टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली मैसेज पूजा जी। आपके लिए हम चलाएंगे ये अगला गाना आते आते, और साथ ही साथ ये हम करेंगे हबी रवि के लिए फ्रॉम वाइफ करिश्मा, और ये गाना हम करेंगे स्पेशली टू अ स्पेशल फ्रेंड अरविंद फ्रॉम पद्मा जी। उन्होंने किसी और गाने की फरमाइश तो की है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टाइम की वजह से हम चला नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये अगला मैसेज हमें मिला है फ्रॉम पूर्णिमा जी ऑफ थ्रियोले। निखिल का आपके लिए सलाम, वी मिस यू व्हेन यू आर नॉट हियर मेनली फॉर संडेज, और डू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मी ऑल द लिसनर्स एंड स्पेशली टू यू डियरेस्ट आरजे। थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा जी फॉर द लवली डेडिकेशन। दो और मैसेजेस हैं, वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन गोज आउट टू हेमा, नरविश, इश्विन, अंजलि एंड पल्लू, धनुकधारी फैमिली एंड ऑल द एमबीसी स्टाफ। क्यों नहीं, आते आते आपका भी नाम आ जाएगा। और लास्ट डेडिकेशन फॉर दिस राउंड, कुंगुमा से सोना, सुचिता, साहिल, अंकुश और खिंजल के नाम हम करेंगे ये अगला गाना फ्रॉम द मूवी चोरी चोरी आते आते।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: संडे नाइट को रोड में एक अलग ही मूवी वाला फीलिंग आ जाता है ना, स्ट्रीट लाइट्स, ठंडी हवा और बैकग्राउंड में हमारे बॉलीवुड के गाने। जो लोग इस वक्त रोड पर हैं, लेट नाइट ड्राइव, टैक्सी शिफ्ट या फिर लौट रहे हैं घर अपने आफ्टर लॉन्ग संडे, प्लीज ड्राइव सेफ, टेक इट इजी और इस रात को रश मत करिए। होपफुली ये नेक्स्ट ट्रैक आपके सफर को थोड़ा और खूबसूरत बना दे।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, हम रिहाई ढूंढते रहते हैं, कभी कभी खुद में, कभी कभी दूसरों में, कभी कभी चीज़ों में। मुझे बताया कि बहुत सारे लोग अभी तैयारी में लगे रहे हैं फॉर टुमारो, फॉर द न्यू वीक। लेकिन अगले ट्रैक से पहले, बिफोर द नेक्स्ट ट्रैक, आई वॉन्ट यू टू टेक अ डीप ब्रेथ। कल का जो स्ट्रेस है वो हम कल हैंडल करेंगे, आज की रात हम बस थोड़ा और जी लेते हैं। जिस सुकून को हम बाहर ढूंढने में लगे हैं, शायद वो हमारे अंदर ही हो।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, तुम साथ दोगे ना, आपने बखूबी साथ निभाया हमारा इस दो घंटे के सफर में, और इसी के साथ आज का बॉलीवुड सिलसिला अभी ख़त्म होता है यहाँ पर. थैंक यू मॉरिशस, थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने अपना संडे नाइट मेरे साथ, हमारे साथ, RM2 के साथ बिताया. आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे कहेंगे कि कल एक नया दिन होगा, एक नई उम्मीद होगी, नए चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन आज का ये म्यूजिक फिल्ड रात आपको शायद थोड़ा लाइटर फील करवाए, यही उम्मीद लेकर चलते हैं. मैं हूं निखिल, विशिंग यू पीसफुल नाइट एंड ब्यूटीफुल वीक अहेड. मिलते हैं अगले संडे को सेम टाइम ऑन सेम चैनल RM2. अभी के लिए थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे विकास जी की आवाज में लेट नाइट ग्रूव्स, और इसी के साथ हम कहेंगे गुड नाइट.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
4: नमस्कार और स्वागत आप सभी का लेट नाइट क्रूज लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये जो वक्त है ये खाली संगीत के लिए 24/7 RM2 आपके साथ तो है ही है, लेकिन 9 से 12 के बीच में वी प्ले सम ब्यूटीफुल लवली मेलोडीज।

0: RM2
1: Radio Musty Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: दोस्तों, जिंदगी एक फिल्म की तरह है, कभी एक्शन, कभी मोशन, कभी फुल कॉमेडी सीन। लेकिन याद रखिए, हीरो वही बनता है जो मुश्किलों से आगे बढ़कर बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते हुए मुस्कुरा देता है। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हौसलों की बैटरी लो हो जाती है। तो दिल को रिचार्ज रखिए और हंसी को अपना परमानेंट साउंड ट्रैक बना लीजिए।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.
1: भाई अगर बात करें तो मोहब्बत ये भी कितनी फिल्मी चीज है ना, कभी ट्रेन छूट जाती है कभी दिल, पर असली प्यार वही होता है जो ईगो से ज्यादा एक दूसरे की फिक्र करे। रिश्तों में लफ्जों से ज्यादा एहसास जरूरी होते हैं और जो दिल से निभाए वही तो अपने होते हैं। तो आज किसी अपने को वक्त दीजिए क्योंकि प्यार का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता।

0: RM2 Radio Masti Feel the Masti.
1: भाई अगर दोस्ती की बात करें तो ये एक ब्लॉकबस्टर है जिसका सीक्वल हर रोज लिखा जाता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी खामोशी का भी सब टाइटल समझ जाए। लाइफ के ट्रैफिक में दोस्ती वो शॉर्टकट होते हैं जो सफर को आसान बना देते हैं। तो अपने यारों को दिल से याद कीजिए, एक मैसेज भेज दीजिए।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: लेट नाइट क्रूज आरएम 2 पर विकास आपके साथ, और चलिए अभी थोड़ी देर में हम चलने वाले हैं ख्वाबों की दुनिया में। अरे साहब, डोडो लैंड में। लेकिन ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है दोस्तों, बुरी बात है उन्हें अधूरा छोड़ देना। सितारे उन्हीं के हाथ लगते हैं जो अंधेरों से डरकर रुकते नहीं। मेहनत का कोई बैकग्राउंड डांसर नहीं होता, उसकी स्पॉटलाइट सीधा सक्सेस पे पड़ती है। बस चलते रहिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: आजकल मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा है ना, कभी धूप तो कभी बारिश और ये ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई। वैसे हल्की हल्की बारिश और बॉलीवुड के गानों का कॉम्बिनेशन ये भी कमाल का है। उफ, कहें तो क्या कहें, जैसे दिल को कोई स्लो मोशन सीन में डाल दिया गया हो। कभी चाय के साथ यादें टपकती हैं, कभी खिड़की पे मोहब्बत। मौसम बदलते रहते हैं पर अच्छे लम्हे हमेशा दिल में रहते हैं, तो बारिश को महसूस कीजिए, सिर्फ देखिए मत। अरे प्यार की बारिश।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: अगर सोचे तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म है फैमिली, जहां हर मेंबर एक अलग कैरेक्टर होता है। कभी मम्मी प्रोड्यूसर बन जाती है, कभी पापा डायरेक्टर, और हम सब अपनी अपनी एक्टिंग में बिजी रहते हैं। पर सच तो ये है दोस्तों, घर की मोहब्बत ही असली लग्जरी होती है, बाकी सब तो बस डेकोरेशन है।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.
2: Late Night Grooves RM2 पर और हमने चाहते कि संडे के बाद अब सीधा मंडे एक विलन के तौर पर आए। भाई मंडे को विलन मत समझिए, ये तो नए हफ्ते की ओपनिंग यानी कि नया सीन है। हर सुबह एक नई स्क्रिप्ट लेकर आती है और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। कल क्या हुआ उससे ज़्यादा ज़रूरी है आज आप अपने लिए क्या करने वाले हैं। तो कॉफ़ी स्ट्रांग रखिए और कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

रात की खामोशी में भी दोस्तों बहुत सी कहानियां छुपी होती हैं। कभी चांद यादों का मैसेंजर बन जाता है और कभी हवा पुरानी बातें सुना जाती है। जो लोग दिल से जीते हैं उन्हें तन्हाई भी गाना लगती है। तो आज रात थोड़ा खुद से भी बात कर लीजिए, दिल को भी कभी कभी सुनना चाहिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: खुद से प्यार, खुद की इज्जत करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया वही वैल्यू करती है जो इंसान खुद की कद्र करता है। झुकना अच्छी बात है, पर सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए। अगर हर बार आप ही टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहानी गलत चल रही है। खुद को कभी कम मत समझिए।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

एक छोटी सी स्माइल दोस्तों, ये छोटी सी स्माइल है ना, बहुत बड़े दर्द को छुपा लेती है। मुस्कुराना कमजोरी नहीं, जिंदगी को स्टाइल से जीने का तरीका है। जो लोग मुश्किलों में भी हंसते हैं वही तो होते हैं असली सुपरस्टार। तो टेंशन को थोड़ा साइड रोल दीजिए और स्माइल को हीरो बना लीजिए।

सफर हमेशा मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है दोस्तों, क्योंकि वही हमें जीना सिखाता है। हर मोड़ पे नया कोई ना कोई मिल जाता है और हर रास्ता एक नई कहानी देता है। गिरना भी जरूरी है, तभी संभलना आता है। बस रुकना मत, क्योंकि स्लो मोशन में भी मूवमेंट तो होती ही है।

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

दिल टूटना, ये भी एक फिल्मी सीन की तरह होता है दोस्तों। पहले दर्द होता है, फिर समझ आता है कि हर जुदाई बुरी नहीं होती। कुछ लोग हमें खुद से मिलाने के लिए भी आते हैं। वक्त सब कुछ सिखा देता है और जख्म धीरे धीरे शेर बना देता है। तो मोहब्बत से डरना मत, ये दर्द ही खूबसूरत होता है।

हर किसी की जिंदगी में कुछ अलग अलग हो रहा नहीं, इतने सारे लोग, इतनी सारी कहानियाँ और हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता हुआ। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कल के बारे में, कल के चैलेंजेस के बारे में, लेकिन अभी इस वक्त इस पल को जीना सीखे मेरे दोस्तों। उन सभी को बिग हेलो जो इंटरनेट के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स आरएम2 पर, और कार्यक्रम तो जारी है। अरे म्यूजिक की बारी है।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
5: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

हर किसी की नजर वक्त पर रहती है और सबसे बड़ा राइटर तो वक्त ही है। ये हर किसी की कहानी बदल देता है। आज जो मुश्किल लग रहा है कल वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। इसलिए बुरा वक्त आए तो घबराए ना और अच्छे वक्त के ऊपर घमंड मत कीजिए, क्योंकि पिक्चर का ट्विस्ट कभी भी आ सकता है और जिंदगी इंटरवल के बाद ही बदलती है। अरे ऐसी तो चलती है।

चलिए इसी गाने के साथ अब जाने का वक्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने प्यार से आपने साथ दिया इन गानों के साथ, और आपका हमारा जो रिश्ता है ना बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही म्यूजिकल है, और ये 24/7 RM2 पर यूं ही चलता जाएगा। चलिए जल्दी मुलाकात होती है, अरे कल सुबह मंडे की शुरुआत होगी, फिर से मुलाकात होगी, और ज़िंदगी में म्यूजिक के चलते यही बात होगी हमेशा 24/7। लेकिन अभी के लिए नमस्कार।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feel the Masti. Radio Masti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।